0: डायरेक्टर ने कि व्हाई इज ही नॉट इट विद हिज टाई, सो शी सेड सॉरी आई डिडंट नोटिस टुडे, तो ही सेड ओके से सॉरी, तो उसने बोला आई एम सॉरी कि आज मैं भूल गया अपनी टाई, यू नो. आफ्टर दैट ही सेज उसके पांव छू के माफी मांगो. आई सेड व्हाट इज दिस पांव छू के, यू नो व्हाट इज दिस बिजनेस. सो द गाय सेड सॉरी सर ये नहीं हो पाएगा, माय सेल्फ रिस्पेक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो उसके बाद वर्क प्लेस डिग्निटी, एम्प्लॉई राइट्स, कॉर्पोरेट कल्चर, इन सारी चीजों की बात हुई. ऑब्वियसली ही वेंट एंड पोस्टेड ऑन हिज सोशल मीडिया कि मेरे साथ ये हुआ है. And then he reported to the Ethics and Compliance Committee, right? Who, as usual, okay. Nothing surprising. जब एक director और बड़ा आदमी तुम्हारे सामने involved होता है, तो उनको cameras में कुछ दिखता ही नहीं है, उनको कभी कुछ समझ ही नहीं आता कि क्या हुआ है, you know? So they said, sorry, we can't see anything. And this guy says, 3,000 cameras हैं उस जगह पर, okay? And they could not find कि हम कहाँ खड़े हैं और क्या हुआ है. Okay, मैं क्या कह सकता हूँ? So here I go. Well, कहने की बात ये है कि corporate culture में वही होता है जो मंजूरे तुम्हारे से ऊपर वाले का होता है, राइट और रॉन्ग बताओ.
1: पावर हायरार्की ऑलवेज वर्क्स लाइक एवरी सिंगल टाइम एंड इट्स वेरी इरिटेटिंग. भाई वो एक बार सॉरी बोल चुका है, एंड व्हाट आर दीज पीपल हु आर स्टिल इन स्कूल, क्योंकि भाई वो बड़े ही नहीं हुए. आई थिंक दीज आर द पीपल जो कभी बड़े ही नहीं हुए. भाई वो सॉरी बोल दिया, खत्म करो, आगे बढ़ो. व्हाट लाइक व्हाट इज दिस पैर छू के माफी मांगना एंड ऑल्सो.
0: हां
1: बट बंदा एटलीस्ट उस बात पे तो मेरे हिसाब से बिल्कुल ही सही था.
0: बिल्कुल सही है, एंड मोर पावर टू हिम. छोड़ो भाड़ में जाए, जो लोग समझते हैं कि एक कॉर्पोरेट जो कंपनी है उनके बाप की जागीर है,
1: या
0: बोलो एक दिन बेटा तुम्हारा भी आएगा.
2: Radio Musti 24/7. Download Radio Musti 24/7 app to call us instantly or email, WhatsApp, text us.

0: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर मैं हूँ अंतरा आपके साथ,
1: मैं आरजे पर मस्ती मॉर्निंग शो पर आपके साथ।
2: लीजिए समर आ गया है लेकर यादों का कारवां।
0: आपने इनकी आवाज तो सुनी है, अब क्या आप अपनी आवाज अपने ही शो के जरिए हमारे लाखों लिसनर्स तक पहुँचाना चाहेंगे? स्टेज फियर को भगाना हो या पैशन को आगे बढ़ाना हो, इट्स इम्पोर्टेंट टू स्टार्ट विद द राइट ट्रेनिंग। The RJ Academy at Masti Media Network is now open for you. That too with a hybrid model for your convenience. 12 hours training per level. Flexible, individual focused syllabus offered for 14 years old and above. Selected trained voices to get an opportunity to host live on Radio Masti 24/7. Email a brief intro to info@radiomasti.com.sg requesting for an application form.

0: हार दे रही तू।
1: You're tuned into Radio Masti 24/7 live, keeping the world Bollywood entertained anytime, anywhere.
2: भाई कैसी कैसी बातें वाद बातें होती रहती है, इसीलिए इनको जगह मिलती है हमारे इस खास प्रोग्राम में। नाम है मस्ती मैडनेस विद रेणुका एंड अंता।
3: दिस इज मस्ती मैडनेस ऑन रेडियो मस्ती 24।
4: जी बिल्कुल सही फरमाया बिल्कुल अंतराज जी ने कि यही होता है फ्राइडे को।
2: अंते ना बुलाने के लिए
4: क्या खबर लाई हो बताओ।
2: खबर कुछ ऐसी है कि ये बंदी, ठीक है, इसको हो गई 25 साल की जेल हुई। अब क्यों हुई वही कहानी है। तो इन्होंने पॉइजन कर दिया अपने लॉन्ग टाइम बॉयफ्रेंड को। क्यों पॉइजन की,
4: क्यों,
2: ठीक है, क्योंकि क्या है कि रायली जो है, जो इसका बॉयफ्रेंड था, ही वाज अबाउट टू इनहेरिट $30 million, ठीक है, एंड उसको पता चला कि ही प्लान्स टू लीव हर आफ्टर इनहेरिटिंग द $30 million, ठीक है। तो मैडम ने सोचा कि कर देते हैं यहीं पे, अभी साइड टाइम है, कल्टी कर देते हैं उसको साइड एकदम, उसमें सिनेरियो से ही हटा दो इससे पहले कि वो मेरे से ही हट जाए, लाइक ब्रेकअप हो जाए एवरीथिंग। सो पॉइजन्ड हिम, मर्डर के केस में ये अंदर गई। नाउ ट्विस्ट तब आया जब ये इन्वेस्टिगेशन जब और थोड़ी सी डीप हुई और ये सच्चाई सबके सामने बाहर आई दैट ये इनहेरिटेंस तो कभी एग्जिस्ट ही नहीं करती थी।
4: ओह नो।
2: So Riley apparently had been deceived by this fraud, you know, वो scam emails होते हैं कि किसी distant relative का fortune उसने अपनी जायदाद इसके नाम पे कर दी है $30 million की, है ना, and they both believed that what happened was true. एंड ये फेक इनहेरिटेंस के चक्कर में बंदा तो गया, बंदी जेल में गई, एंड देयर इज नो फॉर्च्यून टू क्लेम आल्सो।
4: बट एक्चुअली इसीलिए मैं तुम लोगों को बताती नहीं हूँ, जब मेरे को वो ईमेल्स आते हैं ना, नाइजीरिया में मेरे चाचा जो किंग थे वो मेरे नाम की सारी जागीर छोड़ गए, मैं तुम लोगों को बताती नहीं हूँ क्योंकि इंसान जान से जा सकता है यार। बिल्कुल बिल्कुल, कैन नॉट ट्रस्ट एनीबडी इन दिस वर्ल्ड विद ऑल माय मिलियंस एंड बिलियंस एंड ट्रिलियंस। या नॉट इवन एलन मस्क। या रेडियो मस्ती 24/7, विल टेक अ शॉर्ट ब्रेक हियर।

They are fresh. They are.

0: All right, welcome back. Radio Masti 24/7 पर. Of course, मेरे साथ जो काम करता है वो feel good ही करता है. है ना अंतरा, you feel good? बोलो अंतरा, बोलो ना.
1: वैसे कुछ बोला था यहाँ पे?
2: क्या मेरी silence में ही मेरा जवाब नहीं था?
0: All right. So भाई ऐसा है कि मैं आपको लेके जा रही हूँ कर्नाटका ग्रामीण बैंक.
2: Okay.
0: जहाँ पर ऑब्वियसली कर्नाटका में ही है वो. और वहां पर क्या हो रहा है दैट इनफैक्ट आई वॉच दिस वीडियो. राइट, सो द बैंक मैनेजर, ब्रांच मैनेजर की बात हो रही है जो बैंक के अंदर है, वो जो मैनेजर है वो ना जल्दी जल्दी जल्दी चाबी कहाँ है, ये क्या है, वो क्या है करके दरवाजा बंद कर रहा है. वो ग्रिल्स वाला जो गेट होता है ना उस पे लॉक लगा रहा है कि आज कोई घर नहीं जाएगा जब तक काम खत्म नहीं होगा. हाँ, तो पीछे से एक आदमी जो मतलब वीडियो ले रहा है वो ये बोल रहा है कि सर मेरा काम खत्म हो गया है, मेरी 5 बजे शिफ्ट खत्म होती है, अब 6 बज रहे हैं, मुझे अब आप घर जाने दो. कहता नहीं हुआ है तुम्हारा कोई काम खत्म. और फिर उसके बाद में ही कंटिन्यूज टू लॉक. ऑल राइट, और वो जो जो वहाँ का चपरासी है जो चाबियाँ रखता है मेन डोर की, उसको कहता है दूसरी डुप्लीकेट चाबी कहाँ है. मतलब बेसिकली ही सेज आज कोई घर नहीं जाएगा जब तक काम खत्म नहीं होगा. इट वाज सो फनी. या इट्स लाइक फोर्स. अच्छा, उसने ये भी बोला सर ए, मैं ओवर टाइम कर चुका हूँ, मेरे को और ओवर टाइम नहीं करना. कहता करना पड़ेगा. उसने कहा सर ओवर टाइम करना इज नॉट मैंडेटरी. कहता है जब काम खत्म नहीं हुआ आपको ओवर टाइम के पैसे दिए जाएंगे, जाइए ओवर टाइम कीजिए. एंड लाइक ही डजंट वांट टू गो, आई मीन ही डजंट वांट टू, यू नो व्हाट टू
1: अगेन. हु आर दीस पीपल हु हैव स्टिल नॉट गॉट आउट ऑफ स्कूल? आई मीन हु आर दिस पीपल? ये मतलब एडल्ट्स के साथ ये कैसा तरीका हुआ करने का कि आप एंड इट्स सो फनी, लाइक आई वांट टू लाफ ऑन हिम. यार तुम दरवाजा बंद कर रहे हो, चाबी डुप्लीकेट चाबी ले रहे हो. आई मीन ऑब्वियसली ही विल, व्हाट राइट हैव यू गॉट टू डू सो?
0: ट्राई करो ना जेन जी के साथ करो. मिलेनियल्स तो बेचारे फिर भी अपनी टैक्सी कैंसिल करके बैठ जाएंगे काम करके. जेन जी क्या करेंगे, वो सीधा उठेंगे और बोलेंगे सर उसको बोल दो वो मिलेनियल है वो कर देगा. मैं नहीं कर

0: Radio Musty 24/7. Download Radio Musty 24/7 app to call us instantly or email, WhatsApp, text us from the app.
1: And on Radio Musty 24/7, Antara abhi tak mere ko hug kare ja rahi hai, hug ki thank you for being such an amazing boss, thank you.
2: Musty madness, jahan news bhi hoti hai.
3: Wo us din aap jo band karke gaye the to.
4: Acha wo maine batana nahi, sorry.
1: तुम लोगों को बंद करना आसान है, है? कौन तुम लोगों में से ऐसा है जिसको बंद करके मैं घर जा सकती हूँ?
3: उल्टा एक्चुअली मोस्ट ऑफ द टाइम उल्टा होता है. रेड़ों का कहते हैं बहुत परेशान हो गए तुम लोगों से,
1: निकल जाओ
3: बाहर से ना, लॉक करके चले जाओ
1: सीरियसली. और प्रॉब्लम सारी ये है कि तुम लोगों को अगर बंद कर दिया तुम तो माइक ऑन करके दुनिया भर को बता दोगे. कैनॉट रिस्क अ स्टेशन, कैनॉट रिस्क.
3: That is true, but यहाँ पर रिस्क की ही बात हो रही है. पूरा का पूरा रिस्क एक ऐसी जगह और एक ऐसा काम जिसके लिए मैं कभी भी वॉलंटियर नहीं करने वाली हूँ जिंदगी में. मर भी जाऊँ फिर भी नहीं करूंगी. तो कुछ ऐसा है, जापान चलते हैं, ठीक है?
1: हाँ.
3: जापान में बहुत सारी अनयूजुअल चीजें होती रहती हैं, वहां से काफी सारी खबरें आती रहती हैं. सो भाई ये एक प्रॉपर्टी ओनर्स की गुहार है कि कई सारी डिफिकल्ट प्रॉपर्टीज होती है जो बिक नहीं रही होती है.
1: हाँ.
3: उनमें से होती है ये जो हॉन्टेड कहलाई जाती है.
1: यस,
3: लाइक द प्रॉपर्टी. अब वो भी तो किसी ना किसी की प्रॉपर्टी होगी जिसको हॉन्टेड करार दे दिया गया है कि भाई इधर तो मतलब किसी प्रेत आत्मा का चक्कर है एंड ऑल दोस थिंग्स. एंड बहुत ही एक ईजी सी वाइब आती है देखते ही, एकदम वैसा सेक्लूडेड सी जगह पे होता है. तो भाई इन्होंने निकाला है एक जॉब प्रोफाइल, स्पेशल इंस्पेक्टर्स जो है उनको चाहिए एंड वो हायर करते हैं टू स्टे ओवरनाइट इन प्रॉपर्टीज में. ठीक है, इनको कहा जाता है कि भाई डॉक्यूमेंट करो अपने ऑब्जर्वेशन, अपने इंस्पेक्शन प्रोसेस में कैमरा वगैरह सब कुछ अपना प्लेस करो, मॉनिटरिंग इक्विपमेंट प्लेस करो. तो पूरी एक रात उनको उस प्रॉपर्टी पे गुजारनी है. इफ नथिंग अनयूजुअल इज ऑब्जर्व ड्यूरिंग द इंस्पेक्शन, वो रिपोर्ट अपनी सबमिट करते हैं और फिर प्रोस्पेक्टिव बायर्स को दिखाया जाता है कि देखो ना ये आदमी तो जिंदा निकला है एक दिन में, तो तुम किस बात से डर रहे हो?
1: बिल्कुल ठीक बात है. और नहीं नहीं निकला तो
3: उसको बताया नहीं ना भाई, तो मेरा सवाल है. नहीं निकला तो मैं तो अगर मैं उधर भूत नहीं भी हुआ, जस्ट टेल मी दैट इट्स हॉन्टेड एंड मैं, मुझे नहीं लगता है कि मैं अगले दिन निकलूंगी बाहर.
1: रियली इमेजिन नहीं निकला तो अच्छा चलो हमारा ना फेल हो गया एक्सपेरिमेंट, कोई नहीं एक और बंदा ट्राई करते हैं आज के दिन में.
5: नमस्ते बहनों और भाइयों, बड़े ही कम शब्दों में आपको सुनाना चाहता हूँ उस साल का लोकप्रिय गीत ये. सलाम ले जाता हुआ उड़न खटोला और बीन बजाती हुई

0: राज की बात बताऊं, मेरी आवाज कभी अच्छी थी ही नहीं।
1: अगर हम सबकी जानी पहचानी गोल्डन वॉइस के मालिक दी अमीन सयानी जी का ये कहना है, तो सोचिए आप भी अपनी आवाज को सबके दिलों तक कैसे ले जा सकते हैं। द आरजे एकेडमी एट मस्ती मीडिया नेटवर्क इज नाउ ओपन फॉर यू। That too with a hybrid model for your convenience. 12 hours of training per level. Flexible individual focused syllabus offered for 14 years and above. Selected trained voices to get an opportunity to host live on Radio Masti 24/7. Email a brief intro to info@radiomasti.com.sg requesting for application form.
2: Namaste, bahno aur bhaiyo. Main aapka dost Amin Sayani bol raha hoon.

0: Hit us on the gram. It's Radio Musty 24/7. And don't forget to like our ever buzzing Facebook page, Radio Musty 24/7 Singapore.
1: Check it out.
2: तेरे पास कौन सा फोन है अंतरा? कौन सा फोन है तेरे पास? बताना एक बार प्लीज, बताओ बताओ ना।
3: क्रेजी दुनिया, क्रेजी खबरें और हमारा ये क्रेजी
2: सैमसंग। लेकिन मैं एक बात बताऊं, तुम्हारा फोन ना 2276, जी हाँ 22, मतलब बोलना भी नहीं आ रहा क्योंकि अभी चल रहा है 2026, बात कर रहे हैं 2276 की। तब की जनरेशन तुम्हारा फोन नहीं देख पाएगी, लेकिन मेरा फोन देख पाएगी। पूछ क्यों?
4: क्यों?
2: इसलिए क्योंकि आईफोन 17 उसको एक टाइम कैप्सूल में बंद किया गया है। अभी यूनाइटेड स्टेट्स ने 250 एनिवर्सरी सेलिब्रेट करी, राइट? द 250th एनिवर्सरी ऑफ अमेरिका वो सेलिब्रेटेड रिसेंटली ऑन 4th of July। ओके, उस दिन उन्होंने क्या किया है, दे बरीड फिलाडेल्फिया हिस्ट्री पार्क में एक टाइम कैप्सूल, बड़ा सा टाइम कैप्सूल बनाया और उसको वहां पर दबा दिया। उसके अंदर बड़ी सारी चीजें डाली हैं, आर्टिफैक्ट्स, ओके, विच रिप्रेजेंट डिफरेंट यूएस स्टेट्स, और उसी के अंदर एक आईफोन 17 भी डाला गया है। अब टाइम कैप्सूल को खोलेंगे 500th एनिवर्सरी पे ऑफ अमेरिका, ठीक है? मतलब आइडिया देखो, आइडिया देखो। सो अब क्यूरियोसिटी क्या है टेक एंथुजियास्ट में, बड़ा सवाल ये है कि 250 साल के बाद क्या हमारा स्मार्टफोन ऑन होगा या नहीं होगा? अगर तो ऑपरेशनल रहा तो वाह, फ्यूचर जनरेशन देख लेगी कि भाई साहब डिजिटल लाइव्स ऑफ पीपल इन द 21st सेंचुरी, फोटोज, नोट्स, डिजिटल आर्टिफैक्ट्स, जो कुछ भी फोन पे छुपाए हुए। मुझे ना ये खबर देते हुए भी इतनी I'm not kidding. It's like
3: you realize, right?
2: Of course, yeah, I realize. Haan. So there, yeah, imagine, yeah. imagine 2025 में बच्चा कोई पैदा हुआ है, हाँ, yeah. उसके सामने वो काला वाला फोन रख दो, सरकारी वाला जो 90s वाला है, ठीक है? और हाँ, दबा के बेटा, हाँ, दबा के बेटा तेरे लिए रखा है। इसमें बड़ा कुछ होता है, जब तो हम मर जाएंगे ना और तू जिंदा होगा तब तू इसको देखेगा, तो तू कितना समझ पाएगा टेक्नोलॉजी के बारे में? क्या घंटा समझेगा वो? क्या समझेगा?
4: I know, like completely agree with it. मैं तैयार कर रखा था अपने दिमाग में जवाब कि Samsung believes in evolvement. उन्होंने क्या time capsule है? इवॉल्व करो और उस जनरेशन के हिसाब से अपना जो है स्मार्टफोन स्मार्टली प्रेजेंट करो।
2: देखिए अब Samsung के evolution की बात ना करें आप iPhone के सामने, ना ही करें तो बेटर है। iPhone रॉकेट पे पहुंचा होगा तब तक
4: देख ही लिया जाएगा।
2: कौन, ना तू होगी ना मैं
4: होगी। रॉकेट पे पहुंचा होगा, सैमसंग ने कहा कि भाई हम मार्स में बैठे हुए तो रॉकेट तक पहुंचा हुआ है।
2: देखो आज के दिन लड़ने का कोई फायदा नहीं, हम दोनों में से कोई नहीं होने वाला टू सी दैट डे। ओके,
4: ट्रू दैट।

0: शरारा।
1: थकन चारों ओर है, चलते जाओ, पहुंचता कौन है, चलते बहुत हैं। नई दुनिया के सुंदर बन के अंदर पुराने वक्त के पौधे बहुत हैं, और उन्हीं पुराने वक्त के पौधों की कहानी सुनाएगा समर, जो आज हमारी राहों में छायादार घने पेड़ बनकर खड़े हैं, जिनके होने से सफर की कड़ी धूप भी छांव सी लगती है। लेजेंड्स अचीवर सीरीज में सुनिए मेरे यानी समर के साथ कुछ महान शख्सियतों की जिंदगी की दास्तान, सिर्फ और सिर्फ रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर। जोश में रहो,

0: ओह माय गॉड्स, रिसेंटली एक रेवोल्यूशन हुआ उसके बारे में मैंने बात भी की थी, तो लेट मी प्रेजेंट दैट इन फ्रंट ऑफ रेणुका एज़ वेल।
1: क्रेजी दुनिया, क्रेजी खबरें और हमारा ये क्रेजी शो।
2: अरे हम तो खुद ही एक बहुत बड़े रेवोल्यूशन है रेडियो मस्ती 24/7 पर। जी हाँ, चल रहा है मस्ती मैडनेस। मस्ती मैडनेस आपका वो फेवरेट शो है जिसमें सारी दुनिया भर की अजीब और गरीब बातें आती हैं और बॉलीवुड का नामो निशान नहीं होता। उफ, सो रिलैक्सिंग।
0: मैंने इस हफ्ते अपने शो पे पूछा था एक सवाल कि मुझे गिला और शिकवा दोनों हैं, अब दूसरे से तो पूछ नहीं सकती, इन्हीं से पूछती हूँ कि भाई एक शकीरा दूसरी रेणुका, दोनों ने बताने से इनकार कर दिया है कि ये हमेशा इतनी यूथफुल कैसे दिखती है। डिड यू सी फीफा के हाफ टाइम में शकीरा को?
2: ओ माय गॉड, हिप्स डोंट लाई बेबी, हिप्स डू नॉट लाई, एब्सोल्युटली।
0: यू नो व्हेन She came when I was a teenager, she still looks like that. I mean, how? It's just insane.
2: नहीं, तूने मेरे बारे में तो
0: शकीरा से पूछ नहीं सकती क्योंकि वहां तक पहुंची नहीं और ये बताएंगी नहीं, इन्होंने तो मना ही कर दिया है कि just figure it out yourself, guys.
2: At least तूने ये तो नहीं बोला ना सबको कि जब तू टीनेजर थी तब से मैं वैसी लगती हूँ। I hope not.
0: But having said that, भाई, so once everybody saw Shakira and so सारे जितने भी ये जो aesthetic वाले clinics हैं, everybody is kind of doing their promotion saying you know इसने सबसे सही करा रखा है, like पता नहीं चलता है, it's not like too much. But there's this influencer. Now people sometimes they don't know that they have gone overboard. Lip fillers कराए, ठीक है, $50,000 रेणुका शी स्पेंट ऑन दिस

0: लिप फिलर।
1: वाओ,
0: होंठ जो है ना वो इतने बड़े हो गए, इतने बड़े हो गए फिलर के बाद कि बहन से मुंह बंद नहीं हो रहा।
1: I'm just imagining. Okay, go on.
0: Yeah, I have the picture also.
1: Go on. By the way. This is so funny.
0: And I mean, like, how do you know where to stop these people? And why are you doing this with yourself? Where what happened to tumhara body mandir hai?
1: देखो अंतरा, मैंने सोच लिया जिंदगी में मैं किसी और को जज नहीं करूंगी, ठीक है। आई हैव रीच दैट स्टेज वेयर आई हैव डिसाइडेड ईच वन टू हिमसेल्फ। अगर उसको इतनी खुशी मिल रही है होंठ खोल के, मुंह पूरे दिन खोल के चलने में, तो करने देना यार, हमारा क्या जा रहा है? नथिंग, इट्स ओके।
0: आई मीन ओके, सो यू वांट मी टू लुक एट द पॉजिटिव्स?
1: यस यस, उसके होंठ बड़े बड़े,
0: इंटरेस्टिंग कन्वर्सेशन ये बन सकता है।
1: देखो सोचो, अब तुम सोचो जो वो कर सकती है उन बड़े बड़े होंठों के साथ, तुम कभी नहीं एक्सपीरियंस कर पाओगी। हाँ, सी नाउ सडनली यू बिकम जेलस ऑफ द होल सिचुएशन।
0: नॉट रियली नो, बट देन या

0: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर मैं हूँ अंतरा आपके साथ।
1: मैं आरजे अनु पर मस्ती मॉर्निंग शो पर आपके साथ।
2: लीजिए समर आ गया है लेकर यादों का कारवां।
0: आपने इनकी आवाज तो सुनी है, अब क्या आप अपनी आवाज अपने ही शो के जरिए हमारे लाखों लिसनर्स तक पहुँचाना चाहेंगे? स्टेज फियर को भगाना हो या पैशन को आगे बढ़ाना हो, इट्स इम्पोर्टेंट टू स्टार्ट विद द राइट ट्रेनिंग। The RJ Academy at Masti Media Network is now open for you. That too with a hybrid model for your convenience. 12 hours training per level. Flexible, individual focused syllabus offered for 14 years old and above. Selected trained voices to get an opportunity to host live on Radio Masti 24/7. Email a brief intro to info@radiomasti.com.sg requesting for an application form.
3: Good morning!
4: तोहरी लचके जब कमरिया हसारा।

0: तो भाई चलिए, इस समय हम आपको लेके जाएंगे चाइना, जहां पर वाकई जिल्ला हिलाई लिया इस बंदे ने।
1: क्रेजी दुनिया, क्रेजी खबरें और हमारा ये क्रेजी शो।
2: दिस इज वाओ, जिल्ला ही हिलाया कि और
0: तो मैं कहती हूँ सीधे मुंह से, आई कैनॉट स्टार्ट टॉकिंग अबाउट एनी न्यूज, आई एम टॉकिंग अबाउट अ स्टूडेंट एंड हिज ग्रेजुएशन सेरेमनी। ओके, नाउ द गाय वॉक्स ऑन स्टेज विद अ शोल्डर पोल, ठीक है, और वो पोल पे, वो जो लकड़ी का लंबा सा वो एक शोल्डर पे उसने अपना पोल रखा हुआ है, उसके ऊपर 70 मैराथन कॉम्पिटिशन मेडल्स हैं। ओके, अब थिंक अबाउट अ ग्रेजुएशन सेरेमनी, योर नेम इज कॉल्ड एंड यू वॉक अप वेयरिंग द ग्रेजुएशन गाउन और वट एवर, राइट। लेकिन कोई इस तरह से अपने कंधे पे 70 मेडल उठा के नहीं जाता है, सो ऑब्वियसली इट गॉट अ लॉट ऑफ अटेंशन। ये जो सारे के सारे मेडल्स थे, दे एक्चुअली वर द मैराथन्स जो उसने जीते थे, ओनली बिकॉज हिज पेरेंट्स कुड नॉट finance his education. So what this guy was doing was, he was training. He's not in the sports quota as well. Imagine, he's like, you know, any student जो कि घर से पैसे नहीं ला सकता था, so therefore उसने पूरे अपने 4 साल की graduation में उसने दौड़े लगाई, खूब सारी दौड़, okay, and he kept earning money from those competitions, and फिर उसके बाद उसने अपनी पढ़ाई को finance किया. So not bad, he ran a total of 7,835 kilometers, and exactly practice करते हुए, marathons लड़ते हुए, and he said it was huge. बाकी बच्चे ऐश करते थे, मैं 3 साल से घर नहीं गया family reunions पे या anything, मैं सिर्फ practice करता रहता था ताकि मैं, मेरी पढ़ाई ना रुक जाए. Imagine, करो कुछ इमेजिन तुम, हाँ, और तुम किस लिए लड़ते थे अपने माँ बाप से कि मैं स्कूल के बाद 1 मिनट के लिए घूमने चली जाऊँ, पिक्चर चली जाऊँ, मैं क्लास बंक कर लूँ, निकम्मो।
2: ये हमारे माँ बाप कम नहीं थे शर्मा जी के बच्चों को सामने लाने के लिए कि अडल्ट होने के बाद अब भी मेरे को यही सेम डायलॉग्स हैव नॉट चेंज्ड एट ऑल।
0: पहले घर पे भेजती होती थी, अब शो पे भेजती हो रही है, पॉप सिर्फ ऑडियंस बदल गए हैं। हाँ, ऑडियंस बदल गए।
2: मैं वो होना, वो सच्चाई लाना चाहती थी कि ये बात सच हो जाए जो मेरी अगली खबर में।
0: चलो,
2: आई यूज्ड टू फैंटेसाइज अबाउट इट।
0: लव यू। ओ, इसकी फैंटेसीज की बात करने वाली है, जाना मत कहीं पर, इट्स गेटिंग एक्साइटिंग, दिस फ्राइडे इज गेटिंग एक्साइटिंग।
3: It is on the gram. It's Radio Musti 24/7. And don't forget to like our ever buzzing Facebook page, Radio Musti 24/7 Singapore.
4: Check it out.

0: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर मैं हूँ अंतरा आपके साथ।
1: मैं आरजे अनुपम मस्ती मॉर्निंग शो पर आपके साथ।
2: लीजिए समर आ गया है लेकर यादों का कारवां।
0: आपने इनकी आवाज तो सुनी है, अब क्या आप अपनी आवाज अपने ही शो के जरिए हमारे लाखों लिसनर्स तक पहुँचाना चाहेंगे? स्टेज फियर को भगाना हो या पैशन को आगे बढ़ाना हो, इट्स इम्पोर्टेंट टू स्टार्ट विद द राइट ट्रेनिंग। The RJ Academy at Masti Media Network is now open for you. That too with a hybrid model for your convenience. 12 hours training per level, flexible individual focus syllabus offered for 14 years old and above. Selected trained voices to get an opportunity to host live on Radio Masti 24/7. Email a brief intro to info@radiomasti.com.sg requesting for an application form.

0: एक तरफ मुन्नी बदनाम हुई और दूसरी तरफ यहाँ पर अंतरा जो है वो बेचैन हुई अपनी खबर हमारे साथ शेयर करने के लिए. गुड मॉर्निंग, इट्स मस्ती मैडनेस.
1: मस्ती मैडनेस जहाँ न्यूज भी होती है.
2: सो आई वाज गोइंग टू टॉक अबाउट माय फैंटेसी, ओके, एंड लेट मी टेल यू इट इज नॉट ओनली माय फैंटेसी. मेरे जैसे बहुत सारे ऐसे ऐसे नायाब किस्म की पर्सनैलिटीज होंगी जिनकी भी ये पर्सनैलिटी मतलब पर्सनैलिटी ये फैंटेसी रही होगी
0: जी.
2: तो फैंटेसी वाज कि एक दिन किसी एक दिन जस्ट मॉम डैड बहुत सीरियस टॉक के लिए बुलाया और बोले कि बेटा इट वाज जस्ट बिकॉज वी वांटेड टू कीप यू हम्बल, वी नेवर टोल्ड यू बट वी आर रिच मिलियनेयर्स है हम.
0: ऐसा नहीं होने वाला, सुन नहीं होने वाला ना, क्यों माँ बाप पे प्रेशर बढ़ रही है. हाँ
2: बट ये फैंटेसी थी कि कभी हमारे साथ ऐसा हो जाए. लाइक वेन एवर वी यूज्ड टू लाइक स्ट्रगल अ लॉट, लगता था कि काश काश ऐसा

0: में बहुत ही, एंड वो हमेशा अपने बेटे को यही बोलता रहा कि भाई अभी भी जो भी चल रहा है, बहुत डेट है हमारे ऊपर, जो भी चल रहा है, हमने बहुत लोन ले रखा है, दोस्तों से पैसा ले रखा है, जैसे तैसे करके चला रहे हैं, ऑल दोस थिंग्स. और सो ऑब्वियसली द बेटा वॉज लाइक कि नो आई हैव टू स्टडी हार्ड, मेरे को वरना लोन कैसे चुकेगा एंड ऑल दोस थिंग्स. हम्बल करने के बाद जब भाई बड़ा हो गया, अडल्ट हो गया, 20 साल का हो गया, तब जाके उसको बताया कि बेटा ये जो कंपनी है कि इतने बिलियन डॉलर की है, तुम बिलियनर के बेटे हो. जो सोचो वो मोमेंट.
1: नहीं नहीं वो मोमेंट तो सोच ही लेंगे, ठीक है, वो बंदा पागल हो जाएगा, इसके बाद में बोलेगा उड़ाओ उड़ाओ पैसे उड़ाओ, ठीक है, इट्स लाइक न्यू मनी. लेकिन द पॉइंट इज, मुझे ऐसा लगता है कि पूरी जिंदगी इन्होंने उस बच्चे को सीधा तरीके से पैसे की वैल्यू बताने के चक्कर में ये सिखा दिया कि बेटा पूरी जिंदगी लोन पे पली जा सकती है और अपनी अगली जनरेशन को डाली जा सकती है वो प्रेशर कि बेटा तू उतार देना, जैसे तेरे माँ बाप ने लोन पे जिंदगी सारी बिताई है, तू भी ऐसा ही करना और अपने बच्चे पे प्रेशर छोड़ना.
2: मौसम देखे, रंग बदलने, पंछी सारे.
1: मेरे से बच्चा होता तो यही सीखता.
0: Oh my God. Like, but I know for a fact, I've only seen this in movies where, you know, rich parents want to humble their kids and, you know, उनको सब कुछ मतलब grounded रहना बहुत ज्यादा.
1: अमीरों के पास कोई और काम नहीं होता ना, यही होता है पैसे कैसे छुपाएं हैं और हमें जिंदगी भर पैसे कैसे कमाएं.
3: Radio Musty 24/7 Live, a part of Musty Media Network Singapore.

सम स्टोरीज आर इजी टू टेल, पर कुछ कहानियां दिल के अंदर ही रह जाती हैं। एक छोटी सी बात पर पेरेंट्स से दूरी, एक प्यार जो कभी कह नहीं पाए, या वो करियर डिसीजन जो आज भी रातों की नींद चुरा लेता है। ऑन मस्ती मीडिया नेटवर्क, वी आर ओपनिंग अ सेफ स्पेस, डियर मस्ती, दिल से, जहां आप लिख सकते हैं वो सब जो आप कह नहीं पाते। हर हफ्ते हम पढ़ेंगे आपके अनोनिमस लेटर्स, और कभी कभी एक गाना कह देता है वो बात जो लफ्जों में नहीं होती। बिकॉज समटाइम्स रेडियो पर बैठा एक अनजाना इंसान आपको दुनिया से ज्यादा समझ लेता है। सो राइट टू अस, डियर मस्ती, दिल से।

0: एंड ऑफ कोर्स रेडियो मसी 24/7 पर। इस समय बस थोड़ी देर में हम जाने वाले हैं, लेकिन मुझे ना एक मिनट के लिए बचपन की एक याद आ गई कि भाई सुबह उठ के जब माँ बाप तुम्हारी चाय पी रहे हैं तो चाय पीते टाइम तुम भी बोलते हो हमें पीनी है, नहीं नहीं तुम दूध पियो नहीं तो तुम काले हो जाओगे, राइट?
1: मस्ती मैडनेस जहाँ न्यूज भी होती है,
0: मतलब आज के दिन में फिर हमको लाल भी होना चाहिए अगर हम वाइन पीते तो, क्यों भाई अंतरा?
1: ये नेवर एंडिंग उनके सेट ऑफ बिलीव्स जो हमारे भी उन्होंने अंदर डाल दिए थे कि अरे बीज खा लिया पेड़ उगेगा, अब तो
0: exactly.
1: अब तो पेड़ ही उगेगा अंदर से।
0: तो उसी चीज के चलते आजकल एक बड़ी वायरल हो रही है सोशल मीडिया पे स्टोरी कि एक बाप ने अपने न्यू बॉर्न बच्चे को देखा एंड द स्किन टोन वॉज मच डार्कर देन बोथ द पेरेंट्स, और उसने अपनी बीवी को देख के बोला भाई क्या ना तू काली ना मैं काला, यू नो विदाउट ऑफ कोर्स शोइंग एनी काला गोरा डाउन और अप राइट नाउ, बट द पॉइंट इज कि उसको लगा कि भाई ये रंग बच्चे का हम दोनों पे नहीं गया, ये किस पे गया है ये। सो पत्नी ने बड़े आराम से बोला कि तू इतनी कॉफी पीता था, you know when you know we were kind of conceiving, really? तो ये तो होना ही था ना। In fact she gets very angry with the husband and says तेरी वजह से है, अब हम क्या करेंगे, तुझे कहा था कम कॉफी पी। तो मुझे बिल्कुल अपने माँ बाप याद आ गए उस टाइम पर कि हाँ भाई लॉजिक तो वही है, नो डाउट, क्यों भाई।
1: मुझे लगता है कि उसके इस सवाल का एक्चुअली में ये सही ही जवाब है। जिस तरीके का उसने सवाल पूछा था उसके लिए यही बनता है कि बिकॉज तूने कॉफी पी थी इसीलिए हमारा बच्चा काला हुआ।
0: बिल्कुल, अगर तू ऐसा ना करता तो आज हमारा बच्चा कितना गोरा फूल जैसा होता। वेल बायोलॉजिकली इतना मैं जरूर बताना चाहूंगी कि स्किन कलर जो होता है वो डिटरमिन होता है एंटायरली बाय द जेनेटिक्स एंड द मेलानिन, इट हैज नथिंग टू डू विद द कैफीन कंजम्पशन, ओके। बट हमारे माँ बाप तो हमारे माँ बाप है, उनकी जेनेटिक्स की साइंस तो अलग ही है वैसे भी, क्यों भाई?
1: उनकी खुद की साइंस भी अलग है। मतलब ये लोग अपने अपने में मिलकर ही सारे सारे डॉक्टरी भी डिग्री भी पा रखी है इन्होंने, सब कुछ कर रखा है,
0: सब कुछ।
1: आई एम श्योर यू नो अबाउट इट,
0: एवरीबडी नोज अबाउट इट, ऑल चिल्ड्रन नो अबाउट इट टिल दे बिकम पेरेंट्स।

0: Radio Musti 24/7. Download Radio Musti 24/7 app to call us instantly or email, WhatsApp, text us from the app.
1: ये मेरे को एक चीज बड़ी नायाब सी लगती है जेन ज़ी के बारे में कि हर वो चीज जो हमने कर रखी है इन्होंने बस उन चीजों को टर्म्स दे दिए.
2: सही बात है.
3: This is Musti Madness on Radio Musti.
2: भाई जिंदगी में होता तो वही सब आया ना. कोई नई चीजें तो होने लगनी चाहेंगी. वही बच्चे पैदा होंगे, वही लोग मरेंगे, वही काम करेंगे, वही पढ़ाई करेंगे, बस उनके टर्म्स बदलते जाएंगे. राइट. आप क्या है
1: इसको स्टार्टर किट के बारे में आपने सुना होगा. बट दिस इज स्टार्टर मैरिज. They have termed it as starter marriage.
2: Oh, okay.
1: इसका मतलब ये है, this is the first marriage that basically ends within 5 years. कोई बच्चे नहीं, कोई major financial ties नहीं, तो उनको ऐसा लगता है कि it is a self-discovery phase rather than a lifelong commitment. भाई इतना fancy बनाने की जरूरत नहीं है.
2: वाह, very very very creative.
1: Starter marriage है ये.
2: जी,
1: yeah, very creative. Living तो कोई कर ही नहीं रहा था इससे पहले.
2: बिल्कुल, I know.
1: इन्होंने बताया नहीं.
2: हाँ, तो इन लोगों को मुझे समझ में नहीं आता कि इस जनरेशन को कितनी लंबी प्रैक्टिस चाहिए. इतनी लंबी तो शादियां रहती नहीं, इवन मिलेनियल्स की नहीं रहती आजकल, कि जितनी लंबी इनकी प्रैक्टिस सेशन होता है. जान पहचान बढ़ा रहे हैं, तो पहले इनको लिव इन 4-5 साल, कई बार इवन मोर देन दैट. उसके बाद इनको स्टार्टर मैरिज, कि भाई ये 5 साल का अब ये चल रहा है हमारा, क्या बोलेंगे उसको, इंटर्नशिप चल रही है, क्या बोलेंगे उसको,
1: इंटर्नशिप चल रही है, प्रोबेशन पे,
2: प्रोबेशन पे है. और उस 5 साल की स्टार्टर मैरिज के बाद में हम तुम्हें कन्फर्मेशन देंगे कि है कि नहीं. तो 10-12 तो वैसे ही निकल गए. फिर तो वैसे किसी के साथ रहने का मन नहीं करेगा आफ्टर दैट. आई मीन या
1: actually it's not a bad idea though now you put it that way.
2: Yellow. We have some amazing new joinees who want to be on probation. तुमको मुबारक हो, तुम्हारा ये प्रोबेशन. आई एम टू लेजी नाउ टू इवन गेट इनटू ऑल दिस, बट रेडियो मस्ती 24/7 पर अगर आप चाहते हैं कि हम एक स्टार्टर क्लब शुरू करें यहाँ पर और जस्ट फॉर ट्रायल्स, तो हमें जरूर बताइए. 9151896 3. अंतरा तो है ही, शी विल बी द लीड. क्यों भाई, ठीक है.
1: या, व्हाई नॉट.
2: ठीक है.
1: एनी इंटरेस्टिंग थिंग लेट मी नो.
2: बिल्कुल,
1: हम आवाज उठाएंगे.
2: शी इज गोइंग टू राइट द एसओपीज ओवर दिस वीकेंड. फिलहाल के लिए मैं जाके आराम करती हूँ. हैव अ फैंटास्टिक रेस्ट ऑफ द वीकेंड एंड ऑफ कोर्स अ फ्राइडे. हमारे साथ रहिए और हम आपको मिलेंगे 2400 घंटे सातों दिन यहीं पर रेडियो मस्ती 24/7. All right, and have a good day, yeah, Antra. Have a very good day.
1: Yeah, I mean, Renuka bas apni khushi chupa rahi hai. She doesn't have to come this evening, no? That's what.
2: Bhai, she's
1: trying to control her happiness.
2: Kal shaam ke 5 baje se lag raha hai, aaj subah ke 10 baje tak yahin baithi hui hoon.
1: Hai na, aisi wali feel aati hai. Oh, mere ko bhi aati hai. Mande se Tuesday. Yeah.

सम स्टोरीज आर इजी टू टेल, पर कुछ कहानियां दिल के अंदर ही रह जाती हैं। एक छोटी सी बात पर पेरेंट्स से दूरी, एक प्यार जो कभी कह नहीं पाए, या वो करियर डिसीजन जो आज भी रातों की नींद चुरा लेता है। ऑन मस्ती मीडिया नेटवर्क, वेयर ओपनिंग अ सेफ स्पेस, डियर मस्ती, दिल से, जहां आप लिख सकते हैं वो सब जो आप कह नहीं पाते। हर हफ्ते हम पढ़ेंगे आपके अनोनिमस लेटर्स, और कभी कभी एक गाना कह देता है वो बात जो लफ्जों में नहीं होती। बिकॉज समटाइम्स रेडियो पर बैठा एक अनजाना इंसान आपको दुनिया से ज्यादा समझ लेता है। सो राइट टू अस, डियर मस्ती, दिल से।

0: नाचे गया एग्जिट पर
1: और गाने आ गए
0: नॉनस्टॉप म्यूजिक नॉनस्टॉप मस्ती ओनली ऑन मस्ती म्यूजिक कैफे
2: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर.

0: करण अर्जुन आएंगे?
1: न करण अर्जुन आएंगे, न ही आरजेएस आएंगे, पर हाँ तो सिर्फ सुपर हिट बैक टू बैक गाने आएंगे। मस्ती म्यूजिक कैफे
2: थकन चारों ओर है, चलते जाओ, पहुंचता कौन है, चलते बहुत हैं। नई दुनिया के सुंदर बन के अंदर पुराने वक्त के पौधे बहुत हैं, और उन्हीं पुराने वक्त के पौधों की कहानी सुनाएगा समर, जो आज हमारी राहों में छायादार घने पेड़ बनकर खड़े हैं, जिनके होने से सफर की कड़ी धूप भी छांव सी लगती है। लेजेंड्स अचीवर सीरीज में सुनिए मेरे यानी समर के साथ कुछ महान शख्सियतों की जिंदगी की दास्तान, सिर्फ और सिर्फ रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर। जोश में रहो। जब एक धुन से सांस का पता चल जाता था, जब एक मिस्ड कॉल से आवाज का पता चल जाता था, घिसी हुई वीडियो टेप्स पर बनी हमारी क्रिस्टल क्लियर यादें, समोसा पैटीज, फूटी लिमका, फ्लेम्स से लेकर स्लैम बुक्स तक, झूठी बॉटल से कोल्ड ड्रिंक पीने को इनडायरेक्ट किस समझने वाले दिन। योर डोज ऑफ 90s नॉस्टैल्जिया, मस्ती 90s मिक्सटेप विद आपकी 90s वाली अंतरा, थर्सडेज 11 AM ऑनवर्ड्स ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।

0: आदाब सत श्री अकाल गेम जय सिंगापुर सारू जय
1: नो टॉकिंग अलाउड सिर्फ म्यूजिक बोलेगा बैक टू बैक गाने ओनली ऑन मस्ती म्यूजिक कैफे
2: वेयर यू मस्ती 24/7 लाइव अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर चेक इट आउट

0: बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं।
1: छोटी छोटी बातें छोड़ो और बड़े बड़े हिट सुनो। आपके रिक्वेस्ट सी बनाएंगे शो का ब्लॉकबस्टर प्लेलिस्ट। रोमांटिक, फिल्मी, पार्टी वाइब्स सब मिलेगा यही के यही। व्हाट्सएप करिए हमारे ऐप के थ्रू या फिर डायरेक्ट सिंगापुर नंबर 9151896 पर। मस्ती वॉइस आपकी चॉइस।
2: ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव, अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर।
3: चेक इट आउट।
4: चाहिए आप बोलो हम बनाएंगे, चाहे ब्रेकअप हो या क्रश का सीन, ऑल इज वेल। आपकी प्लेलिस्ट आपकी मस्ती। व्हाट्सएप करिए हमारे ऐप के थ्रू या फिर डायरेक्ट सिंगापुर नंबर 9151896 पर। मस्ती बॉयज आपकी चॉइस।
2: ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव, अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर।
3: चेक इट आउट।
5: मेरे करण अर्जुन आएंगे?
1: ना करण अर्जुन आएंगे ना ही आरजेस आएंगे, पर हाँ तो सिर्फ सुपर हिट बैक टू बैक गाने आएंगे। मस्ती म्यूजिक कैफे।

थकन चारों ओर है, चलते जाओ, पहुंचता कौन है, चलते बहुत हैं। नई दुनिया के सुंदर बन के अंदर पुराने वक्त के पौधे बहुत हैं, और उन्हीं पुराने वक्त के पौधों की कहानी सुनाएगा समर, जो आज हमारी राहों में छायादार घने पेड़ बनकर खड़े हैं, जिनके होने से सफर की कड़ी धूप भी छांव सी लगती है। लेजेंड्स अचीवर सीरीज में सुनिए मेरे यानी समर के साथ कुछ महान शख्सियतों की जिंदगी की दास्तान, सिर्फ और सिर्फ रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर। जोश में रहो,

0: समर के साथ सुनते रहिए लेजेंड्स अचीवर्स, किससे उन हस्तियों के जो जीने की प्रेरणा बने, ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।
1: कहते हैं यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, गौर फरमाइएगा, यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना होता है। पूछा चिड़िया से कैसे बना तेरा आशियाना, वो बोली भरनी पड़ती है उड़ान बार बार, तिनका तिनका उठाना होता है। क्या बात है। इस खूबसूरत से मोटिवेशनल कोट के साथ लीजिए, मैं एक बार फिर से हाजिर हूँ। मेरा नाम है समर, रेडियो 24/7 लाइव पर दोनों बाहें फैला कर रहा हूँ आपका इस्तकबाल, स्वागत। गेम चेसिंग अबाउट सारू जे, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। तो जी, आज के लेजेंड्स की अचीवर सीरीज हम शुरू करें, एक कहानी सुनाएं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये साफ है कि मंजिल पानी है तो मेहनत तो करनी पड़ेगी, और सही दिशा में सही सोच के साथ करनी पड़ेगी, और पैशन यानी कि जुनून वो तो होना ही चाहिए, क्योंकि मंजिल को पाने के रास्ते में ये जुनून ना हो तो वहां तक पहुंचने के बारे में सोचना भी बेमानी रहता है कि नहीं, सही कह रहा हूं ना। तो चलिए इसी खूबसूरत बात के साथ शुरू करते हैं आज का अचीवर सीरीज का ये एपिसोड। रेडियो मसी 24/7 लाइव पर आप हैं मेरे साथ, और आपका ढेर सारा प्यार हमें लगातार मिल रहा है। आपको ये शो कैसा लगता है इसके बारे में हमारे फेसबुक पेज पर आकर आप हमें यूं ही बता दे रहिएगा। आज हम जिस लेजेंड की बात करने जा रहे हैं सिंगापुर, वो एक सक्सेसफुल नहीं बल्कि सुपर सक्सेसफुल लेडी है। जी हाँ, सुपर सक्सेसफुल इसलिए कि उन्होंने इंडिया का तो नाम रोशन किया ही है, यूएसए अमेरिका तक की इकोनॉमी को मजबूत करने में उनका बहुत बड़ा रोल रहा है। एनी गैसेस? चलिए ज्यादा इंतजार नहीं करवाते हुए मैं ही तारुफ करवा देता हूँ। हमारी आज की लेजेंड है कई सालों तक दुनिया की सबसे पावरफुल और सक्सेसफुल लेडीज की फेहरिस्त में शामिल रहने वाली इंदिरा नोई जी। जी, आपको बताऊंगा इस पावरफुल वुमन की सक्सेस के पीछे का वो राज जो आप जानना चाहेंगे, वो कहानी जो हम सबको इंस्पायर कर सकती है। तो अभी शो के प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए सुन लेते हैं बेहतरीन से गाने, लौट कर आएंगे तो हम इस कहानी को शुरू से शुरू करेंगे। आप गौर से सुनिएगा, आज आप बहुत कुछ जानेंगे और साथ में सीखेंगे भी। सो एंजॉय रेडियो मस्ती 24/7 लाइव। मैं लौटता हूँ इन गानों के बाद।

0: Some stories are easy to tell, पर कुछ कहानियाँ दिल के अंदर ही रह जाती हैं। एक छोटी सी बात पर पेरेंट्स से दूरी, एक प्यार जो कभी कह नहीं पाए, या वो करियर डिसीजन जो आज भी रातों की नींद चुरा लेता है। On Masti Media Network, we're opening a safe space. Dear Masti, दिल से, जहां आप लिख सकते हैं वो सब जो आप कह नहीं पाते। हर हफ्ते हम पढ़ेंगे आपके अनोनिमस लेटर्स, और कभी कभी एक गाना कह देता है वो बात जो लफ्जों में नहीं होती। बिकॉज समटाइम्स रेडियो पर बैठा एक अनजाना इंसान आपको दुनिया से ज्यादा समझ लेता है। सो राइट टू अस, डियर मस्ती, दिल से
1: कहानियां उनकी जिनके होने से हम हैं। सुने लेजेंड्स अचीवर्स में समर की जुबानी, रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर।
2: वेलकम बैक, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है लेजेंड्स के अचीवर सीरीज में। आज हमने खोली हुई है किताब इंडियन अमेरिकन बिजनेस एग्जीक्यूटिव इंदिरा नुई जी की। इंदिरा नुई के बारे में आज हम बात कर रहे हैं, जो पेप्सिको कंपनी की सीईओ और प्रेसिडेंट तक रह चुकी हैं। इतना ही नहीं, उनका नाम वर्ल्ड 100 मोस्ट पावरफुल वुमेन की लिस्ट में भी शामिल रह चुका है। बट यहाँ तक पहुँचना आसान नहीं होता साहब, उनका भी ये सफर बहुत ही मुश्किलों और चैलेंजेस से भरा रहा, जिसके बारे में आज मैं आपको बताने वाला हूँ। पर अभी के लिए थोड़ा सा फ्लैशबैक पर चलते हैं और जान लेते हैं इंदिरा जी के चाइल्डहुड के बारे में। हाँ, तो अमेरिका में रहकर बुलंदियों के झंडे गाड़कर हिंदुस्तान का नाम रोशन करने वाली इंदिरा नुई जी का जन्म हुआ चेन्नई में। चेन्नई जो पहले मद्रास हुआ करती थी, तमिलनाडु की कैपिटल। फादर बैंक में एम्प्लॉय थे और मदर हाउसवाइफ, तो कह सकते हैं कि बहुत ही साधारण सा परिवार था उनका। बहनें थीं ये दो, एक का नाम है चंद्रिका, और जो चंद्रिका जी है ना, वो भी एक बहुत ही सक्सेसफुल बिजनेस वुमन है और एक बेहतरीन सिंगर कम म्यूजिशियन भी है। हाँ, उन्हें एक वक्त में ग्रैमी अवार्ड के लिए भी नॉमिनेट किया गया था। दोनों बहनें पढ़ने में अव्वल दर्जे की रहीं। स्कूलिंग मद्रास के ही होली एंजल्स एंग्लो इंडियन स्कूल से हुई, जिसके बाद उन्होंने मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स में ग्रेजुएशन किया। उसके बाद ये चली गईं कोलकाता, जहां के आईआईएम से उन्होंने मैनेजमेंट में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। मैंने कहा था ना, पढ़ाई में वो सुपर टैलेंटेड रही शुरू से आखिर तक जी। फिर तो मैडम इंडिया से चली गईं अमेरिका, येल यूनिवर्सिटी अमेरिका, जहां से इंदिरा नुई जी ने पब्लिक एंड प्राइवेट मैनेजमेंट सब्जेक्ट पर स्टडी कंप्लीट की। अमेरिका जब कोई जाता है तो उसे वो भा जाता है, तो इंदिरा जी को भी वो ऐसा भाया कि फिर तो वो जैसे वहीं की होकर रह गई। येल यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन करने के बाद उन्होंने बोस्टन कंसल्टेशन फर्म ज्वाइन कर ली और टेक्सटाइल एंड कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्री में मुवक्किलों की सेवा करने लगी। वेल, ये सब जानकर आप सभी को ये तो पता चल गया होगा कि इंदिरा जी ने पढ़ाई में कोई कमी नहीं छोड़ी है, जिसका आगे चलकर उनको बहुत फायदा भी मिला। क्या रहा वो फायदा, मैं आपको आगे बताऊंगा, पर फिलहाल चलते हैं एक बेहतरीन म्यूजिकल ब्रेक की तरफ। लौटेंगे इन गानों के बाद और कहानी को आगे बढ़ाएंगे। इंदिरा जी की, इंदिरा नुई जी की कहानी आप सुन रहे हैं समर की जुबानी।

अपनी सूरत दिखा दे समा खूबसूरत बना दे, नहीं तो तेरा नाम लेके तुझे कोई इल्जाम देके तुझको इस महफिल में रुसवा ना कर दूं रुसवा।

खफा हो के चेहरा छुपा ले मगर याद रख हुस्न वाले जो है आग तेरी जवानी मेरा प्यार है सर्द पानी मैं तेरे गुस्से को ठंडा ना कर दूँ हाँ।

0: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर। समर के साथ आप सुन रहे हैं लेजेंड्स अचीवर्स।
1: सुस्वागतम, वेलकम, खुशामदीद आप सब आए। तो देखिए, बाहर आ गई है रेडियो मस्ती 24/7 लाइव के स्टूडियोज में रोशनी ज्यादा ज्यादा और ज्यादा हो गई है। लेजेंड्स के अचीवर सीरीज में मैं हूँ समर, और आज मैं बात कर रहा हूँ इंदिरा नोई जी की। जैसे कि हम जानते हैं कि हर बच्चे का फर्स्ट स्कूल उसका खुद का घर होता है, और जो पेरेंट्स होते हैं ना वो उसके पहले टीचर होते हैं। ठीक वैसा ही इंदिरा नोई जी की लाइफ में भी रहा। उनके पेरेंट्स की सीख का असर इंदिरा और उनकी बहन पर जिंदगी भर तक रहा। और हाँ, यही वो सीख और नसीहतें थी बचपन की जो आगे चलकर सक्सेस की वजह भी बनी। वेल, जहां तक मैंने पढ़ा है इंदिरा जी के बारे में, तो मैं कह सकता हूं कि उन पर फादर से ज्यादा मदर की बातों का असर था, मतलब ज्यादा प्रभाव था। दरअसल शुरुआती दिनों में उनकी मां ने दोनों बेटियों को घर पर ही रहकर ऐसे ऐसे खेल खिलवाए जिन्होंने उनकी लाइफ को सही दिशा में शेप देने का शुरू से ही काम कर दिया था। इंदिरा नूई ने खुद अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि उनकी मदर हर रात डिनर के बाद उनसे ये इमेजिन करने के लिए कहती थी, कल्पना करने के लिए कहती थी कि सोच कर देखो कि तुम किसी देश की प्रेसिडेंट हो या प्राइम मिनिस्टर हो, और ऐसा सोचकर बताओ कि तुम अपनी कंट्री के लिए क्या क्या करती। और इसके लिए इन दोनों बहनों को कुछ वक्त दिया जाता सोचने के लिए, ताकि वो अलग अलग से इसे प्रिपेयर कर सकें, प्लानिंग कर सकें, और फिर माँ के साथ बैठकर, सामने बैठकर अदर प्रेजेंट करती थी, और उसके बाद माँ ही उन्हें जज करती थी और डिसाइड करती थी कि कौन उस दिन बेहतर रहा, है ना। वेल साहब, क्या कमाल का मजेदार खेल है, मजा का मजा। और फ्यूचर में एक लीडिंग रोल आपको कैसे निभाना है इसकी तैयारी भी हो रही है। तो इसी खेल खेल में इंदिरा नोई जी का कॉन्फिडेंस बिल्ड होता चला गया। और हाँ, एक बात और कि उनके पेरेंट्स भले ही उनके गाइड रहे, पर कभी भी बच्चों पर करियर को लेकर जरा भी उन्होंने दबाव नहीं बनाया, बल्कि उन्हें हर वक्त सपोर्ट ही किया। और जैसे कि मैंने बताया था ना कि इंदिरा शुरू से ही ब्रिलियंट स्टूडेंट रही हैं, तो यही वजह थी कि क्लास के दूसरे स्टूडेंट्स कुछ समझ नहीं आने पर उनकी हेल्प लिया करते थे। अब सोचिए, जिसकी परवरिश ही ऐसी हुई हो, वो लाइफ और करियर की लंबी रेस में जितने भी सारे हर्डल्स आते हैं वो उन्हें पार करने के लिए एक तरह से तैयार हो ही जाता है। मानते कि नहीं मानते आप, बस पेरेंट्स की सीख और अच्छे संस्कार से इंदिरा नोई भी आगे बढ़ने लगी और हर तरह के चैलेंजेस को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हो गई। उनकी जिंदगी में आगे क्या हुआ और वो कॉर्पोरेट सेक्टर में कैसे आई और कैसे उन्होंने ग्रो किया, ये सब आप भी जानना चाहते हैं, मैं भी बताने को बेताब हूँ। पर अभी वक्त हो चला एक और म्यूजिकल ब्रेक का, तो जल्दी से सुन लेते हैं ये खूबसूरत गाने और जल्दी से लौट कर आएगा। लेजेंड्स के अचीवर सीरीज जारी है सिंगापुर और साउथ ईस्ट एशिया के एकमात्र लाइव हिंदी बॉलीवुड रेडियो, रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर। मैं हूं समर आपके साथ।

0: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर मैं हूँ अंतरा आपके साथ,
1: मैं आरजे अनुपम मस्ती मॉर्निंग शो पर आपके साथ।
2: लीजिए समर आ गया है लेकर यादों का कारवां।
3: आपने इनकी आवाज तो सुनी है, अब क्या आप अपनी आवाज अपने ही शो के जरिए हमारे लाखों लिसनर्स तक पहुँचाना चाहेंगे? स्टेज फियर को भगाना हो या पैशन को आगे बढ़ाना हो, इट्स इम्पोर्टेंट टू स्टार्ट विद द राइट ट्रेनिंग। The RJ Academy at Masti Media Network is now open for you. That too with a hybrid model for your convenience. 12 hours training per level, flexible individual focused syllabus offered for 14 years old and above. Selected trained voices to get an opportunity to host live on Radio Masti 24/7. Email a brief intro to info@radiomasti.com.sg requesting for an application form.
4: Good morning.

थकन चारों ओर है, चलते जाओ, पहुंचता कौन है, चलते बहुत हैं। नई दुनिया के सुंदर बन के अंदर पुराने वक्त के पौधे बहुत हैं, और उन्हीं पुराने वक्त के पौधों की कहानी सुनाएगा समर, जो आज हमारी राहों में छायादार घने पेड़ बनकर खड़े हैं, जिनके होने से सफर की कड़ी धूप भी छांव सी लगती है। लेजेंड्स अचीवर सीरीज में सुनिए मेरे यानी समर के साथ कुछ महान शख्सियतों की जिंदगी की दास्तान, सिर्फ और सिर्फ रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर। जोश में रहो,

0: समर के साथ सुनते रहिए लेजेंड्स अचीवर्स, किससे उन हस्तियों के जो जीने की प्रेरणा बने, ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।
1: मुझे मालूम था आप कहीं जा नहीं सकते, आज चिपक कर सुन रहे हैं आप रेडियो मस्ती 24/7 लाइव, जहां पर मैं समर अचीवर सीरीज लेजेंड्स के अचीवर सीरीज में इंदिरा नुई जी की कहानी आप तक पहुंचा रहा हूं। हाँ, तो म्यूजिकल ब्रेक से पहले मैंने आपको बताया था कि कैसे इंदिरा नुई जी का बचपन गुजरा और पेरेंट्स की सीख और एजुकेशन में अव्वल रहते हुए वो कैसे धीरे धीरे आगे बढ़ती रही। अब हम चाहे IIM कोलकाता की बात करें या अमेरिका की येल यूनिवर्सिटी की, उन्होंने अपनी हायर एजुकेशन मैनेजमेंट सब्जेक्ट से की थी, तो ये तो तय हो गया था कि वो अब या तो एंटरप्रेन्योर बनेंगी या कॉर्पोरेट सेक्टर में थोड़ा बहुत काम वाम कर लेंगी। और वैसे भी ये तो उस वक्त कह नहीं सकते थे ना कि यही लेडी आगे चलकर इंडिया या अमेरिका ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की मोस्ट पावरफुल सुपर लेडी बनकर उभरेगी। वेल, इंदिरा जी की आगे बढ़ने का सक्सेस का मंत्र रहा है स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना, शॉर्टकट नहीं लेना। अच्छी जॉब्स की अगर बात करें तो उन्होंने मोटरोला कंपनी में बतौर वाइस प्रेसिडेंट कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजिस्ट ज्वाइन किया था और यहीं से उनकी लीडरशिप क्वालिटीज भी और ज्यादा पैनी होती चली गई। इसके बाद इस कॉर्पोरेट लेडी की जिंदगी में आया लाइफ का सबसे बड़ा और अहम पड़ाव जिसने उनको बुलंदियों तक पहुंचाने का काम किया। जी हां, इंदिरा नुई जी की नई ज्वाइनिंग हुई दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक पेप्सिको में। कौन नहीं जानता था इस नाम को, इनफैक्ट अब भी ये नाम अक्सर हमारी जबान पर रहता है। खैर, यहां वो कंपनी के साथ जुड़ी 1994 में और अपनी काबिलियत के दम पर 2001 तक वो यहां की प्रेसिडेंट और फिर 2006 में CEO तक बन गई। जरा सोच कर देखिए, पेप्सिको कंपनी की प्रेसिडेंट और CEO, वाओ, और वो भी एक इंडिया को बिलोंग करने वाली लेडी, है ना कमाल की बात और बहुत गर्व की बात, बहुत प्राउड की बात है। वेल, इस एक कंपनी में 12 साल उन्होंने दिए, 12 साल, और लॉन्ग एंड सक्सेसफुल जर्नी रही उनकी ये। यहां तक पहुंचने पर उनके नाम और काम से हर कोई वाकिफ हो चुका था। 2018 में जाकर उन्होंने इस कंपनी से स्टेप डाउन किया। बहुत ही इमोशनल पल था वो, बताऊंगा उस भावुक पल के बारे में भी, लेकिन अभी तो एक और म्यूजिकल ब्रेक ले लेते हैं। म्यूजिकल ब्रेक के बाद पेप्सिको से विदाई लेते हुए क्या कुछ मैसेज इंदिरा नुई ने दिया सबको, बताऊंगा आपको। सुनते रहिए रेडियो 24/7 लाइव पर समर के साथ लेजेंड्स के अचीवर सीरीज।

0: राज की बात बताऊं, मेरी आवाज कभी अच्छी थी ही नहीं।
1: अगर हम सबकी जानी पहचानी गोल्डन वॉइस के मालिक दी अमीन सयानी जी का ये कहना है, तो सोचिए आप भी अपनी आवाज को सबके दिलों तक कैसे ले जा सकते हैं। द आरजे एकेडमी एट मस्ती मीडिया नेटवर्क इज नाउ ओपन फॉर यू। That too with a hybrid model for your convenience. 12 hours of training per level. Flexible individual focused syllabus offered for 14 years and above. Selected trained voices to get an opportunity to host live on Radio Masti 24/7. Email a brief intro to info@radiomasti.com.sg requesting for application form.
2: Namaste behen aur bhaiyo, main aapka dost Amin Sayani bol raha hoon.
3: कहानियाँ उनकी जिनके होने से हम हैं। सुने लेजेंड्स अचीवर्स में समर की जुबानी रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर।
4: सुस्वागत हम आप सभी का इस्तकबाल, मैं हूँ समर, रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर आप सुन रहे हैं लेजेंड्स दी अचीवर सीरीज। आज बात हो रही है इंदिरा नुई जी की। दुनिया के सबसे पावरफुल सीईओज में से एक बनने का ये सफर इंदिरा नुई जी के लिए आसान नहीं था, क्योंकि वो एक प्रोफेशनल होने के साथ ही एक पत्नी और एक माँ का किरदार भी निभा रही थी, लिहाजा दोनों नावों में सवारी करना उनके लिए बेहद मुश्किल भरा था। और इस बात का जिक्र या यूं कहिए कि इस रास्ते पर्दा उन्होंने तब उठाया जब वो पेप्सिको कंपनी के सीईओ पोजीशन से स्टेप डाउन कर रही थी। दरअसल नुई ने कई सालों तक इस कंपनी की कमान संभाली और अलविदा कहते हुए अपने एम्प्लॉइज के लिए एक ओपन लेटर लिखा। उस लेटर में ही उन्होंने जैसे अपने दिल के तमाम जज्बात लिख डाले थे। बताया कि जॉब के साथ साथ घर परिवार को संभालना या कहें दोनों के बीच बैलेंस रखना एक लेडी के लिए कितना चैलेंजिंग रहता है, जैसा उनके साथ भी रहा। उन्होंने बताया कि करियर का ग्राफ लगातार प्रोग्रेस करता रहा, पर कई बार मन में एक टीस भी रही कि शायद मैं काम से ज्यादा अपने परिवार को प्रायोरिटी देती तो बेहतर रहता। लेटर में लिखा उन्होंने कि मेरी लाइफ में मुझे अमेजिंग करियर मिला, पर ईमानदारी से कहूं तो मैं सोचती हूं कि काश मैंने काम से ज्यादा अपने बच्चों और परिवार को वक्त दिया होता, काश। वेल, एक ऐसी ही बात को याद करते हुए उन्होंने अपनी बेटी के उस प्रोटेस्ट का भी जिक्र किया जब एक रेनोवेशन वर्क की वजह से उनकी ऑफिशियल टेबल वहां से हटाई जा रही थी। ये देखकर बेटी ने गुस्से से उन्हें कहा था, ये क्या माँ, ये टेबल कहाँ जा रही है, जिसके नीचे बैठकर मैं खेला करती थी और कभी कभी सो भी जाया करती थी, आप इसे किसी और के यहाँ कैसे भिजवा सकती हैं। और ऐसा प्रोटेस्ट एक बार नहीं कई बार उनकी बेटी ने किया। एक बार तो बेटी ने मम्मी के नाम लेटर लिखा, मम्मी प्लीज प्लीज प्लीज प्लीज प्लीज, जी हाँ 5 दफा प्लीज लिखते हुए कहा, घर आ जाओ, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन और ज्यादा प्यार करूंगी जब आप घर आएंगे। ऐसी ऐसी बेटी की बातें उन्हें कई बार कछोटती थी। इसलिए इंदिरा नुई जी कहती हैं कि एक तरफ फॉर्च्यून 500 कंपनी में सीईओ जैसे बड़े ओहदे पे काम करना और एक तरफ परिवार को संभालना सबसे बड़ा चैलेंजिंग टास्क रहता है, समझ गए ना आप। खैर, एक और ऐसा किस्सा नुई जी की चैलेंजिंग जिंदगी को सुनाऊंगा, लेकिन एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक के बाद। आप सुनते रहिए समर के साथ लेजेंड्स के अचीवर सीरीज रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर।

0: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर। समर के साथ आप सुन रहे हैं लेजेंड्स अचीवर्स।
1: वेलकम बैक, मैं हूं समर, रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर आप मुझे सुन रहे हैं। और जिनकी कहानी में आज आप इतना इंटरेस्ट दिखा रहे हैं उनका नाम है इंदिरा नुई। लेजेंड्स के चीवर सीरीज रेडियो मैसेज 24/7 लाइव पर एक बार फिर से हाजिर है। म्यूजिकल ब्रेक से पहले हमने बात की थी कि किस तरह से एक लेडी को चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है जब वो वर्क प्लेस पर रहती है, और साथ ही साथ घर परिवार को संभालने का भी उन पर दबाव रहता है। वैसे ऐसी बात हम एक नॉर्मल लेडी के बारे में तो सोच सकते हैं, बट वर्ल्ड की सबसे दमदार और टॉप कॉर्पोरेट रह चुकी इंदिरा नुई के साथ भी ठीक वैसा ही होना सोचने पर मजबूर कर देता है ना। लेकिन ये हम सभी को एक लेसन भी देता है, खासतौर से लेडीज के लिए, कि घर और काम साथ साथ और वो भी सक्सेसफुल तरीके से निभाना आसान नहीं रहता। इंदिरा नुई जी की जॉब के बीच फैमिली प्रॉब्लम से जुड़ा एक और वाकया भी आया जिसे वो कभी कभार शेयर भी करती रहती हैं। ये बात तब की है जब उन्हें प्रमोट करते हुए पेप्सिको कंपनी का प्रेसिडेंट बनाया गया। जी हाँ, उन्हें प्रेसिडेंट बनाया गया, और इंदिरा नुई के लिए ये प्रमोशनल अपॉइंटमेंट किसी सपने से कम नहीं था। वैसे उन्हें ये खुशखबरी तब मिली जब वो ऑफिस में ही थी। कहते ना, जब कोई ऐसा बड़ा और धमाकेदार ऑफर मिलता है तो खुशी का ठिकाना नहीं रहता। बस वैसे ही कुछ हुआ उनके साथ भी। वो उस प्रमोशन की बात से बहुत खुश हुई। जब वो घर पहुंची तो उनकी मदर इन लॉ ने इस प्रमोशन पर कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई, पर जब उन्होंने

0: माँ से कहा, मम्मा मैं आज बहुत खुश हूँ, आपको भी ये बड़ी खुशखबरी बतानी है। उस पर जवाब आया, ये सब बातें बाद में करते रहना, जाओ जाकर पहले दूध ले आओ। घर पर दूध खत्म हो गया। बताइए, कोई इतनी बड़ी खुशी के मौके पर आपको ऐसा रिप्लाई दे या कुछ ऐसा ऑर्डर दे दे तो कैसा लगेगा। बहरहाल जब वो सुपर स्टोर से दूध लेकर वापस लौटी तो उन्होंने पेप्सिको प्रेसिडेंट के बारे में माँ को बताया। तब माँ ने उन्हें ऐसा ज्ञान पिलाया जो आज तक वो भूल नहीं सकती। वो खुद कहती है कि तब माँ ने कहा था, देखो इंदिरा, ऑफिस की बात ऑफिस में छोड़कर आया करो, प्रमोशन ठीक है, पर यहाँ घर पर तुम सबसे पहले एक पत्नी हो, एक माँ हो। अगर घर पर दूध की जरूरत है तो तुम्हें उस पर प्रायोरिटी देनी चाहिए, उसे पहले लाना चाहिए। बस वो बात उनके दिलो दिमाग पर आज तक रह रह कर खटकती है। मानते ना आपके लेजेंड बनने का ये सफर कितना मुश्किल होता है। बहरहाल आगे और भी कुछ दिलचस्प बातें इंदिरा नुई जी के बारे में है मेरे पास, फिलहाल यहाँ एक और म्यूजिकल ब्रेक की दरकार है, ले लेते हैं इसे। इसके बाद फिर से आएंगे, कहानी को आगे बढ़ाएंगे। बहुत इंस्पायरिंग स्टोरी है, सब सुनिए और जरूर सुनिए रेडियो मिर्ची 24/7 लाइव पर।
1: वेलकम फ्रेंड्स टू द शो दैट नेवर एंड्स। आई हैव टेकन द चांस टू मेक यू डांस। You will move your feet and groove to the beat. So then, which beat would you like? Dosto, kaun sa dance pasand karenge aap? Rumba?
2: No!
3: No!
1: Samba?
3: No!
2: No!
1: Rumba?
3: No!
1: Samba?
3: No!
1: Tequila?
3: No!
1: Tango?
3: No!
1: Charleston?
3: No!
1: Polka?
3: No!
1: No!
3: No!
1: To phir kya ho?
3: One,

0: कहीं कोई चाहता है 105 बच्चे।
1: बेबी बूम नहीं, बेबी सुनामी। क्रेजी दुनिया, क्रेजी खबरें और हमारा ये क्रेजी शो। दिस इज मस्ती मैडनेस ऑन रेडियो मस्ती 24/7।
2: डाउनलोड रेडियो मस्ती 24/7 ऐप टू कॉल अस इंस्टेंटली और ईमेल व्हाट्सएप टेक्स्ट अस फ्रॉम द ऐप।

0: समर के साथ सुनते रहिए लेजेंड्स अचीवर्स, किस्से उन हस्तियों के जो जीने की प्रेरणा बने। ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।
1: लीजिए एक बार फिर से हाजिर है समर रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर लेजेंड्स के अचीवर सीरीज में इंदिरा नुई जी की कहानी लेकर। इंदिरा नुई की काबिलियत और लीडरशिप स्किल्स का लोहा हर कोई समझने लगा था। यहाँ तक कि जब 2012 के आसपास अमेरिका में मंदी का दौर चल रहा था, तब अमेरिकन प्रेसिडेंट बराक ओबामा ने उन्हें इससे निपटने और इकोनॉमिक स्ट्रेटजी सजेस्ट करने के लिए इनवाइट किया था। अब बताइए, मानते हैं इस लेडी का दम? वेल, नुई का मानना है कि आप अपने अंदर एक खास तरह की स्किल को खोजें जिसमें आप सबसे अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। वो कहती थी कि आपकी स्किल ऐसी होनी चाहिए कि लोगों को ऐसा एहसास हो कि कोई पर्टिकुलर काम आपके अलावा और कोई कर ही नहीं सकता। और उन्होंने एक बार कहा भी था, अपने पूरे करियर में मैं जो कुछ भी सीखी हूँ तो वो है मुश्किल काम को आसान बनाना। चाहे कोई भी मसला हो, कोई मुझे एक मुश्किल काम देता है तो मैं एक स्टूडेंट बन जाती हूँ। मुझे इस बात की तब परवाह नहीं होती कि मैं किसी मल्टीनेशनल कंपनी की सीईओ हूँ या प्रेसिडेंट हूँ या सीएफओ हूँ, तब मैं सिर्फ और सिर्फ एक स्टूडेंट बन जाती हूँ। ओ वाओ, इंस्पायरिंग, काफी अच्छा है। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा भी था कि मैं एक दुकानदार हूँ, इसलिए मुझे अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए हर एंगल से सोचना चाहिए। अपने कारोबार को बढ़ाने के लिए हमें कस्टमर क्या सोच रहा है, कंज्यूमर की क्या सोच होती है, वैसी सोच रखनी होगी। और सभी तरह से सोचने के बाद अपने लोगों से इस बारे में चर्चा भी जरूरी तौर पर करनी चाहिए। इससे उसके अच्छे या बुरे के बारे में किसी नतीजे तक पहुंचा जा सकता है। वेल, ये तमाम बातें लगने में तो बहुत ही बेसिक सी लगती हैं, पर जब इन्हें किसी पेप्सिको जैसी बड़ी कंपनी में इंप्लीमेंट करने की बात होती है ना, तो अच्छे अच्छे लोगों के पसीने छूट जाते हैं। पर इंदिरा नुई जी के मामले में ऐसा होना शायद नामुमकिन रहा, इसीलिए तो वो हमारी आज की लिविंग लेजेंड हैं। और हम उनके बारे में, उनके अचीवमेंट्स, उनके सक्सेस के बारे में, उनके आइडियाज के बारे में बात कर रहे हैं, कुछ सीख रहे हैं उनके काम करने के तौर तरीकों से, है ना। तो खैर, यहाँ एक और म्यूजिकल ब्रेक ले लेते हैं, फिर मिलेंगे, मुलाकात यहीं होगी। यह रेडियो मस्ती 24/7 लाइव, मैं हूँ समर, रेडियो मस्ती पर।

थकन चारों ओर है, चलते जाओ, पहुंचता कौन है, चलते बहुत हैं। नई दुनिया के सुंदर बन के अंदर पुराने वक्त के पौधे बहुत हैं, और उन्हीं पुराने वक्त के पौधों की कहानी सुनाएगा समर, जो आज हमारी राहों में छायादार घने पेड़ बनकर खड़े हैं, जिनके होने से सफर की कड़ी धूप भी छांव सी लगती है। लेजेंड्स अचीवर सीरीज में सुनिए मेरे यानी समर के साथ कुछ महान शख्सियतों की जिंदगी की दास्तान, सिर्फ और सिर्फ रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर। जोश में रहो,

0: कहानियाँ उनकी जिनके होने से हम हैं। सुने लेजेंड्स अचीवर्स में समर की जुबानी रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर।
1: अभी का इंतजार कर रहा था, स्वागत है आपका, आइए रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर। लेजेंड्स के अचीवर सीरीज में आज बात हो रही है इंदिरा नोई जी की। पेप्सिको को सालों तक लीड करते हुए इंदिरा नोई जी की जिंदगी और करियर बुलंदियों तक जा पहुंचा था। हालांकि हमने ये भी जाना कि उनका यहां तक का सफर आसान नहीं रहा, बल्कि ये कई तरह के हर्डल्स, कई तरह के चैलेंजेस का सामना करती रहीं और उन्हें, जैसे कि मैंने कहा ना कि कैसे मुश्किलों को आसान बनाना है, वो अपना फंडा लगाती रहीं और मुश्किलों को आसान करके आगे बढ़ती रहीं। सारी हर्डल्स को उन्होंने पार कर लिया। घर परिवार को संभालने के साथ ही उन्होंने जिस लेवल तक जाते हुए कॉर्पोरेट सेक्टर में अपनी सर्विस अदा की है, वो साहब कमाल है और वाकई काबिल तारीफ है, कभी भुलाई नहीं जा सकती। तो सलाम है ऐसी सक्सेसफुल लेडी को। बहरहाल, क्योंकि इंदिरा जी ने इस सेक्टर में एक वुमन होते हुए काबिल गौर काम किया, तो लिहाजा वो सम्मान की भी हकदार रही। इसीलिए कह सकते हैं कि उनकी लाइफ का एक पार्ट उपलब्धियों भरा रहा। जी हाँ, अचीवमेंट्स ही अचीवमेंट्स की हैं, वो हकदार और रही और मिलता रहा उन्हें। एक वक्त आया जब वो सुपर पावर अमेरिका जैसी कंट्री की सेकेंड बिगेस्ट कंपनी की लेडी चीफ रही। जी हाँ, तब IBM की गिनी रोमेटी के बाद पेप्सिको की CEO रहते हुए इंदिरा नोई दूसरे नंबर पर रही। उन्हें फोर्ब्स मैगजीन की टॉप 30 पावरफुल वुमेन की लिस्ट में भी शामिल किया गया। 2009 के फोर्ब्स सर्वे में इंदिरा नोई को दुनिया में तीसरी सबसे ताकतवर महिला का नाम दिया गया। इस बीच इंडियन गवर्नमेंट भी समय समय पर उन्हें फेलिसिटेट करती रही। इनफैक्ट उन्हें इंडिया में बिजनेस एंड कॉर्पोरेट सेक्टर में बेहतरीन योगदान के लिए पद्म भूषण अवार्ड से भी नवाजा गया। वहीं वो अमेरिका में भी आर्ट एंड साइंस के लिए अमेरिकन एकेडमिक फेलोशिप के लिए चुनी गई। और मतलब इतने सारे अवार्ड्स की फेहरिस्त है उनके नाम पर, बहुत ही लंबी है। इसलिए यहाँ बात को यहीं रोक देते हैं, एक म्यूजिकल ब्रेक लेते हैं, लौट कर आएंगे तो जारी रखेंगे इंदिरा नोई के बारे में ये दिलचस्प बातें। आप सुनते रहेगा रेडियो 24/7 लाइव पर समर के साथ इंदिरा नोई की कहानी, ऑफ कोर्स मेरी जुबानी।

0: 10 का 20 10 का 20 10 का 20 10।
1: अरे अरे अब बस 10 से दिल कहाँ भरेगा। मस्ती टॉप 20 लेकर रेणुका जो आने वाली है। टाइम टू रेज द बार। मस्ती टॉप 20 बॉलीवुड चार्ट बस्टर्स ऑफ द वीक फुल ऑन रेणुका स्टाइल। Now, pumping up your Thursday evenings, 5 p.m. onwards, catch the OG rockstar Renuka with the week's top chart busters. Josh mein raho.
2: Radio Masti 24/7 live par. Samar ke saath, aap sun rahe hain Legends Achievers.
3: Pani ko barf mein badalne mein waqt lagta hai. Dhale huye suraj ko nikalne mein waqt lagta hai. थोड़ा धीरज रख, थोड़ा और जोर लगा। किस्मत के जंग लगे दरवाजे को खुलने में वक्त लगता है। कुछ देर रुकने के बाद फिर से चल पड़ना दोस्त। हर ठोकर के बाद संभलने में वक्त लगता है। जो तूने कहा कर दिखाएगा रख यकीन, जो तूने कहा कर दिखाएगा रख यकीन, गरजे जब बादल तो बरसने में वक्त लगता है। वेलकम बैक, मैं हूं समर, रेडियो मसी 24/7 लाइव पर। वाजिब बात है, हर किसी को जल्दी है कि बस वो चुटकी बजाते ही सक्सेसफुल हो जाए, है ना? पर ऐसा नहीं है। हमारे जो लेजेंड्स हैं, जिनकी जिंदगी की किताबें हम खोलकर आप तक पहुंचाते हैं, उन्होंने सिर्फ सोच ही बड़ी नहीं रखी है, बल्कि उस तक पहुंचने के लिए बहुत ही कड़ी मेहनत भी की है। और देखिए नतीजे आपके सामने। हमारी आज की लेजेंड जो है इंदिरा नुई जी, उनका भी कुछ ऐसा ही मानना रहा है। मेहनत की और सब्र रखा और सक्सेसफुल लेडी बनकर उभरी। तभी तो कहते हैं कि ऐसे लेजेंड से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। फर्श से अर्श तक पहुंचे लोग हम सभी को मोटिवेट करते हैं, है ना? बहरहाल इंदिरा नुई जी के कॉर्पोरेट चेहरे की तो हमने बात की, एक दूसरा पहलू भी तो है उनकी पर्सनल लाइफ का। वो ये है कि उनके जो हस्बैंड हैं राजू के नुई, वो भी एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन है। दो बेटियां हैं उनकी, तारा और प्रीता नुई। दोनों बेटियां भी अपने पेरेंट्स के नक्शे कदम पर आगे बढ़ रही हैं। और जहां तक बात है इंदिरा नुई जी के एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज का, तो वो तो एक टाइम था जब गर्ल्स के एक रॉक बैंड का हिस्सा हुआ करती थी, वो गिटार प्ले करती थी वो वहां पर। और हाँ, क्रिकेट खेलने का भी बड़ा शौक रहा उन्हें। तो ये उनकी पर्सनल लाइफ से जुड़ी बातें। अभी एक और म्यूजिकल ब्रेक ले लेते हैं, इसके बाद होगी आज की आखिरी मुलाकात। सुनने जरूर आइएगा।

0: This is Radio Masti 24/7 Live, the only local connect with global expat Indians. Anytime, anywhere.
1: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर मैं हूँ अंतरा आपके साथ।
2: मैं आरजे अनुपम मस्ती मॉर्निंग शो पर आपके साथ।
3: लीजिए समर आ गया है लेकर यादों का कारवां।
0: आपने इनकी आवाज तो सुनी है, अब क्या आप अपनी आवाज अपने ही शो के जरिए हमारे लाखों लिसनर्स तक पहुंचाना चाहेंगे? स्टेज फियर को भगाना हो या पैशन को आगे बढ़ाना हो, इट्स इम्पोर्टेंट टू स्टार्ट विद द राइट ट्रेनिंग। द आरजे अकेडमी एट मस्ती मीडिया नेटवर्क इज नाउ ओपन फॉर यू। That too with a hybrid model for your convenience. 12 hours training per level. Flexible, individual focused syllabus offered for 14 years old and above. Selected trained voices to get an opportunity to host live on Radio Masti 24/7. Email a brief intro to info@radiomasti.com.sg requesting for an application form.

0: समर के साथ सुनते रहिए लेजेंड्स अचीवर्स, किससे उन हस्तियों के जो जीने की प्रेरणा बने, ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।
1: वेलकम बैक, मैं हूँ समर, रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर। किसी ने कितना सही कहा है कि हम क्या नहीं कर सकते, इस दुनिया में ऐसा कोई काम नहीं है जो नामुमकिन हो। हम वो सब कर सकते हैं जो सोच सकते हैं, और ये भी कहते हैं कि हम वो सब सोच सकते हैं जो आज तक हमने सोचा नहीं है। जहाँ इसी ताने वाने के साथ बड़ी हमारी आज की लेजेंड इंदिरा नुई की जिंदगी, जिन्होंने हमेशा ही अपनी सोच तो बड़ी रखी, जो भी टारगेट या कहें गोल उन्हें सेट करके दिए गए या उन्होंने सेट किए, उन तक बिना किसी शॉर्टकट के आगे बढ़ती रही स्टेप बाय स्टेप। और आखिर वो वक्त आ ही गया जब हर टारगेट उन्होंने अचीव किए। आज वो दूसरों के लिए ट्रेंड सेटर हैं, हम सभी के लिए लिविंग लेजेंड हैं। तो चलिए आज के इसी आखिरी पैगाम के साथ, कि रुकावटें आती हैं सफलता की राहों में ये कौन नहीं जानता, रुकावटें आती हैं सफलता की राहों में ये कौन नहीं जानता, फिर भी वो मंजिल पा लेता है जो कभी हार नहीं मानता, फिर भी वो मंजिल पा लेता है जो कभी हार नहीं मानता। तो जी हाँ, बाधाएं आती रहेंगी सफलता के बीच में, पर हार कर बैठना नहीं है, उसे चैलेंज करना है, उसे एक्सेप्ट करना है, उस चैलेंज को और आगे बढ़ना है, उन हर्डल्स को, उन मुश्किलों को आसान बनाना है पॉजिटिव सोच के साथ। और देखिए कैसे आप अपनी मंजिल तक पहुंच जाएंगे। तो फिर इसी प्रॉमिस के साथ कि लेजेंड्स के अचीवर सीरीज में समर मिलवाएगा ऐसी ही एक और शख्सियत से जिनसे हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलेगी। अभी के लिए मैं साइन ऑफ करता हूँ, लेकिन जाते जाते कुछ वादे करते जाइए। कहिए कि आप रखेंगे अपना ख्याल, अपने अपनों का ख्याल, अपने आसपास के लोगों का और चीजों का ख्याल। किसी के दिल में मोहब्बत बनकर बस जाएंगे, किसी के चेहरे पर मुस्कान बनकर सज जाएंगे, और कुछ ऐसा कर जाएंगे कि लोग आपको याद रखें। याद मुझे भी रखिएगा अपनी दुआ में। मेरा नाम है समर, आपसे मिलूंगा यहीं पर, तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार, टेक केयर।

0: पहुंचे गया एग्जिट पर और गाने आ गए नॉनस्टॉप म्यूजिक नॉनस्टॉप मस्ती ओनली ऑन मस्ती म्यूजिक कैफे
1: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर.
2: चेक इट.

0: करण अर्जुन आएंगे?
1: ना करण अर्जुन आएंगे, ना ही आरजेएस आएंगे, पर हाँ तो सिर्फ सुपर हिट बैक टू बैक गाने आएंगे मस्ती म्यूजिक कैफे।
2: सिंगापुर बोर हो गए हो क्या? अब टेंशन और बोर्डम होने वाला है फुल ऑन डिसअपीयर,
3: क्योंकि आ रहा है मस्ती हैंगआउट विद आरजे मुग्धा। गॉसिप का ओवरलोड, एंटरटेनमेंट का धमाका और दुनिया भर की खबरों का तड़का।
2: सीधी न्यूज तो सब देते हैं, ये शो देता है टेढ़ी न्यूज विद सार्कैज़म की टॉपिंग और मस्ती की क्रीम। गारंटीड मूड होगा हाई, इमेजिनेशन होगी फ्लाई और आप हंसोगे बिन वाईफाई।
3: तो सिंगापुर गेट रेडी फॉर योर डेली लाफ्टर डोज मस्ती हैंगआउट विद आरजे मुग्धा, ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।
2: फॉर शो टाइमिंग्स चेक आउट द रेडियो मस्ती 24/7 लाइव ऐप। आरजे मुग्धा के साथ गॉसिप भी, मस्ती भी, सार्कैज़म भी, सब कुछ सिर्फ मस्ती हैंगआउट।
4: ये रात तो अपनी है पर एक ख्याल किसका है?
5: तुमको लेकर
4: ये रात हमें इतना प्यार क्यों करती है?
5: मुझे चांद पहले चलो,
4: सबको सुलाकर हमसे अकेले में बात करती है। बनके रात के हम सफर हर रोज 11 बजे। ट्यून इन टू
5: रात।

0: सत श्री अकाल गेम जय सिंगापुर सारू जय
1: नो टॉकिंग अलाउड सिर्फ म्यूजिक बोलेगा बैक टू बैक गाने ओनली ऑन मस्ती म्यूजिक कैफे
2: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर
3: चेक इट आउट

0: लाइफ थोड़ी बोरिंग लग रही है? टेंशन नहीं लेने का, टाइम फॉर योर थेरेपी सेशन, मस्ती का मंत्रा विद आरजे अंतरा, जहां न्यूज है फिल्मी, गॉसिप है स्पाइसी और म्यूजिक है फुल ऑन मस्त, बिकॉज हैप्पीनेस का असली मंत्रा लाती है आरजे अंतरा, हर ट्यूसडे सुबह 7 बजे ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7। As the sun rises, so does hope. Begin your day with devotion, harmony and positivity with the Devotional Hour on Radio Masti 24/7. Masti pe bhakti, subah 6 baje se.
1: Mere Karan Arjun aayenge.
2: Na Karan Arjun aayenge, na hi RJs aayenge. Par haan to sirf super hit back-to-back gaane aayenge. मस्ती म्यूजिक कैफे कैफे कैफे कैफे।

0: नाचे गया एग्जिट पर
1: और गाने आ गए ड्यूटी
0: पर। Non-stop music, non-stop musty, only on Musty Music Cafe.
2: Radio Musty 24/7 Live, a part of Musty Media Network Singapore. Check it.

प्यार किया तेरे मेरे रास्ते में खड़ी दीवार किया है ना, है ना। प्रेम के थाने में मैंने दिल का एफआईआर किया, तूने मुझे प्यार किया, मैंने तुझे प्यार किया है ना, है ना।

0: अर्जुन आएंगे?
1: न करण अर्जुन आएंगे, न ही आरजेएस आएंगे, पर हाँ तो सिर्फ सुपर हिट बैक टू बैक गाने आएंगे मस्ती म्यूजिक कैफे।
2: थकन चारों ओर है, चलते जाओ, पहुंचता कौन है, चलते बहुत हैं। नई दुनिया के सुंदर बन के अंदर पुराने वक्त के पौधे बहुत हैं, और उन्हीं पुराने वक्त के पौधों की कहानी सुनाएगा समर, जो आज हमारी राहों में छायादार घने पेड़ बनकर खड़े हैं, जिनके होने से सफर की कड़ी धूप भी छांव सी लगती है। लेजेंड्स अचीवर सीरीज में सुनिए मेरे यानी समर के साथ कुछ महान शख्सियतों की जिंदगी की दास्तान, सिर्फ और सिर्फ रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर। जोश में रहो।
3: बिना फ्लाइट टिकट खरीदे दुनिया का चक्कर लगवाएगा कौन? पेपराजी से भी तेज गॉसिप्स आपको लाकर देगा कौन? क्या बात है, आप तो काफी स्मार्ट निकले। तो सुनिए, सालों से एक टक सिंगापुर तक आपको अपडेट रखने वाली आपकी आरजे नुपुर को मस्ती मॉर्निंग्स पर ट्यूसडे वेंसडे एंड थर्सडे को ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव। ये है मस्ती मॉर्निंग्स मेरी जान।
4: फॉर शो टाइमिंग्स चेक आउट द रेडियो मस्ती ऐप नाउ।

0: हेलो नमस्कार आदाब सत श्री अकाल गेम जय सिंगापुर सारू जय
1: नो नो टॉकिंग अलाउड सिर्फ म्यूजिक बोलेगा बैक टू बैक गाने ओनली ऑन मस्ती म्यूजिक कैफे
2: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर

0: नए दिन की शुरुआत शांति और श्रद्धा के साथ। भक्ति, प्रेरणा और सुकून भरे गीत सुनिए रेडियो मस्ती 24/7 पर। मस्ती पे भक्ति सुबह 6 बजे।
1: योर मस्ती म्यूजिक कैफे इज ओपन। फ्रेशली ब्रूड बीट्स

0: आरजे गया एग्जिट पर
1: और गाने आ गए ड्यूटी पर।
0: Non-stop music, non-stop musty, only on Musty Music Cafe.
2: Radio Musty 24/7 Live, a part of Musty Media Network Singapore. Check it.

0: साहब सत श्री अकाल गेम जय सिंगापुर सारू जय
1: नो टॉकिंग अलाउड सिर्फ म्यूजिक बोलेगा बैक टू बैक गाने ओनली ऑन मस्ती म्यूजिक कैफे
2: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर
0: चेक इट

0: जापान में रोती हुई औरतों को मिलते हैं हैंडसम हग करने वाले बॉयज।
1: हमारे यहाँ तो बस बेटा रो मत ये मिलता है, यहाँ मिलते हैं दो करारे थप्पड़। This is Masti Madness on Radio Masti 24/7.
2: Download Radio Masti 24/7 app to call us instantly or email, WhatsApp, text us from the app. Josh Mehra.
3: राज की बात बताऊं, मेरी आवाज कभी अच्छी थी ही नहीं।
4: अगर हम सब की जानी पहचानी गोल्डन वॉइस के मालिक दी अमीन सयानी जी का ये कहना है, तो सोचिए आप भी अपनी आवाज को सबके दिलों तक कैसे ले जा सकते हैं।
5: द आरजे एकेडमी एट मस्ती मीडिया नेटवर्क इज नाउ ओपन फॉर यू। That too with a hybrid model for your convenience. 12 hours of training per level. Flexible individual focused syllabus. Offered for 14 years and above. Selected trained voices to get an opportunity to host live on Radio Masti 24/7. Email a brief intro to info@radiomasti.com.sg requesting for application form.
6: Namaste behno aur bhaiyo, main aapka dost Amin Sayani bol raha hu.
7: ना करण अर्जुन आएंगे ना ही आरजेएस आएंगे, पर हाँ तो सिर्फ सुपर हिट बैक टू बैक गाने आएंगे। मस्ती म्यूजिक कैफे कैफे कैफे कैफे।

0: सिंगापुर बोर हो गए हो क्या? अब टेंशन और बोर्डम होने वाला है फुल ऑन डिसअपीयर,
1: क्योंकि आ रहा है मस्ती हैंगआउट विद आरजे मुग्धा। गॉसिप का ओवरलोड, एंटरटेनमेंट का धमाका और दुनिया भर की खबरों का तड़का।
0: सीधी न्यूज तो सब देते हैं, ये शो देता है टेढ़ी न्यूज विद सार्कैज़म की टॉपिंग और मस्ती की क्रीम। गारंटीड मूड होगा हाई, इमेजिनेशन होगी फ्लाई और आप हंसोगे बिन वाईफाई।
1: तो सिंगापुर, गेट रेडी फॉर योर डेली लाफ्टर डोज। मस्ती हैंगआउट विद आरजे मुग्धा, ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।
0: फॉर शो टाइमिंग्स चेक आउट द रेडियो मस्ती 24/7 लाइव ऐप। आरजे मुग्धा के साथ गॉसिप भी, मस्ती भी, सार्कैज़म भी, सब कुछ सिर्फ मस्ती हैंगआउट।

0: हैंगआउट करेंगे पर थोड़ा हटके। ये है मस्ती हैंगआउट आरजे मुग्धा के साथ।
1: फ्राइडे की ना एक बहुत बड़ी स्पेशलिटी है, आज शाम से हर इंसान सडनली लाइफ का एक्सपर्ट बन जाता है। मंडे को जिसे ये पता नहीं था कि करियर कहाँ जा रहा है, फ्राइडे आते उसे बिल्कुल क्लियर हो जाता है कि डिनर कहाँ करना है। हेलो, हाय एवरीबॉडी, दिस इज मी मुग्धा ऑन मस्ती हैंगआउट। अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। मैं आरजे मुग्धा अगले 3 घंटे आपके साथ यहाँ पर बातें करने वाली हूँ एक ऐसी फिल्म के आसपास जिसने हमें बताया कि लाइफ का कंफ्यूज होना कोई टेक्निकल फॉल्ट नहीं है एक्चुअली, या लाइफ में कंफ्यूज होना कोई बड़ी बात नहीं है, इट्स एक्चुअली अ पार्ट ऑफ ग्रोइंग। एंड फ्राइडे आते ही हम सारे यही हो जाते हैं, अ लिटिल कंफ्यूज्ड, अ लिटिल प्लान, पता नहीं, मतलब मिक्स ऑफ इमोशंस हो जाता है, है ना। वेल, आज की जो फिल्म है वो है वेक अप सिड द टॉकिंग पॉइंट। यू नो, एक ऐसी फिल्म है जो इतनी सालों बाद भी बहुत रिलेटेबल लगती है, क्योंकि सच यही है, किसी के पास पूरी लाइफ का ना कोई परफेक्ट प्लान नहीं होता है। कभी किसी को करियर समझ में नहीं आता है, कभी रिलेशनशिप समझ में नहीं आती है, एंड फ्राइडे नाइट को यही तो डिसाइड नहीं हो पाता है कि बाहर जाना है कि ब्लैंकेट के अंदर डिसअपीयर हो जाना है। हर एक की अलग अलग प्रॉब्लम है, मैं तो ये कहना चाहती हूँ। बट शायद हर चीज का जवाब जरूरी नहीं है कि मिल ही जाए, हर चीज का जवाब मिलना ही तो जरूरी नहीं है। यस, कभी कभी ना प्रेजेंट को एंजॉय करो, फ्रेंड के साथ मेमोरीज बनाओ, स्मॉल स्मॉल खुशियां जो है ना उनको अननेसेसरीली एनालाइज करने मत बैठो, नहीं, एंजॉय करो, दैट्स इनफ। तो आज के शो में हम कोई करियर काउंसलिंग नहीं करने वाले, डोंट वरी, हम तो सिर्फ शो को लाइट बनाएंगे, गन एंजॉय करेंगे एंड वेक अप सिड। अब अभी फ्राइडे थोड़ा थोड़ा थोड़ा से बाकी है, थोड़ा सा है ना।

थकन चारों ओर है, चलते जाओ, पहुंचता कौन है, चलते बहुत हैं। नई दुनिया के सुंदर बन के अंदर पुराने वक्त के पौधे बहुत हैं, और उन्हीं पुराने वक्त के पौधों की कहानी सुनाएगा समर, जो आज हमारी राहों में छायादार घने पेड़ बनकर खड़े हैं, जिनके होने से सफर की कड़ी धूप भी छांव सी लगती है। लेजेंड्स अचीवर सीरीज में सुनिए मेरे यानी समर के साथ कुछ महान शख्सियतों की जिंदगी की दास्तान, सिर्फ और सिर्फ रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर। जोश में रहो,

0: हैंग आउट करेंगे पर थोड़ा हटके। ये है मस्ती हैंग आउट आरजे मुग्धा के साथ।
1: Have you ever noticed? वीकेंड आते ना हम सब एक बात बोलते हैं, इस बार तो कुछ नया मस्त प्लान करेंगे। और फिर वही कैफे, वही ऑर्डर, वही प्लान्स, क्योंकि हम कुछ नया एक्सप्लोर कर ही नहीं पाते हैं। शायद इसीलिए मुझे पर्सनली वेक अप सिड का ये जो ट्रैक है ना, जो हमने अभी सुना, वो मुझे बहुत पसंद है। इस गाने की एनर्जी ना बिल्कुल ऐसी है कि वेक अप सिड, वेक अप, स्टेप आउट, कुछ तो नया ट्राई करो यार लाइफ में। एंड पता है, नया ट्राई करने की जब बात हो रही है तो एक बहुत ही कमाल की बॉलीवुड की स्टोरी है। राजेश खन्ना और जीनत अमान का एक बहुत ही आइकॉनिक गाना है, हम दोनों दो प्रेमी दुनिया छोड़ चले। इसकी शूटिंग जो है ना, एक चलती हुई ट्रेन पर हुई थी। उस वक्त जो म्यूजिशियंस हैं वो स्ट्राइक पे थे, उसके बावजूद आरडी बर्मन साहब ने क्या किया पता है? सैंड पेपर से ट्रेन की रिदम को उन्होंने क्रिएट किया। एंड वही छोटा सा जो एक्सपेरिमेंट है, बॉलीवुड की हिस्ट्री क्रिएट कर गया। देखा, कभी कभी ना कम्फर्ट जोन से बाहर निकलना बहुत जरूरी होता है। कुछ नया ट्राई करो, आइकॉनिक ट्राई करो, लाइफ में अपने आप कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग हो जाएगा। तो इस वीकेंड रूटीन को थोड़ा ब्रेक करेंगे और फिलहाल सुनेंगे ये ट्रैक।
2: एक संस्कारी लड़की ने दिल पे डाला डाका, हम ब्रह्मचारी लड़कों का जिससे भी डाटा का।
1: ट्रेन इम्पोर्टेंट है ना, क्योंकि इस गाने में भी ये बंदा कुछ तो नया ही ट्राई करने जा रहा है, ट्रस्ट मी।
3: You're tuned into Radio Masti 24/7 live, keeping you connected anywhere, anytime, the Desi way.

0: राज की बात बताऊं, मेरी आवाज कभी अच्छी थी ही नहीं।
1: अगर हम सबकी जानी पहचानी गोल्डन वॉइस के मालिक दी अमीन सयानी जी का ये कहना है, तो सोचिए आप भी अपनी आवाज को सबके दिलों तक कैसे ले जा सकते हैं। द आरजे एकेडमी एट मस्ती मीडिया नेटवर्क इज नाउ ओपन फॉर यू। That too with a hybrid model for your convenience. 12 hours of training per level. Flexible individual focused syllabus offered for 14 years and above. Selected trained voices to get an opportunity to host live on Radio Masti 24/7. Email a brief intro to info@radiomasti.com.sg requesting for application form.
2: Namaste behno aur bhaiyo, main aapka dost Amin Sayani bol raha hoon.

0: हैंगआउट करेंगे पर थोड़ा हटके। ये है मस्ती हैंगआउट आरजे मुग्धा के साथ।
1: फ्राइडे आए हाय। फ्राइडे की सबसे अच्छी बात पता है क्या है? चाहे पूरा हफ्ता कैसा भी गया हो, फ्राइडे कहता है चलो एक फ्रेश स्टार्ट करते हैं। और शायद इसी वजह से मुझे ना वेकअप सेट का ये जो टाइटल ट्रैक है जो मैंने अभी पिक किया है आज, मुझे बहुत पसंद है। हर बार सुनो और हर बार ऐसा लगता है कि हाय लाइफ तो बस अभी शुरू हो रही है, तुरंत एक सेकंड पहले जब से गाना शुरू हुआ है। रीसेट, रीस्टार्ट एंड बिगिन। वैसे एक फ्रेश बिगनिंग तो बॉलीवुड में भी हो रही है। आर माधवन जो है वो एक ऐसा शो होस्ट करने वाले हैं जिसने काफी सालों पहले टेलीविजन में इतिहास रचा था आकर के। जीना इसी का नाम है 2.0, जस्ट लाइक माय शो मस्ती हैंगआउट 2.0। वाह क्या बात है। ये कैसा आइकॉनिक शो है जिसे कभी फारूक शेख जो है अपनी वॉर्म से जो है बहुत यादगार बना चुके हैं। अब ये कमान माधवन के हाथों में है। अब माधवन देखो कह भी रहे हैं कि वो उसी सोल को आज के ऑडियंस तक लेकर आना चाहते हैं। फारूक शेख का वॉर्म लाना तो ना तो जरूरी भी नहीं है। देखो हर इंसान का अपना एक अलग ऑरा होता है। बट आई एम श्योर माधवन इज वेरी डाउन टू अर्थ और उनको बहुत चीजों के बारे में बहुत नॉलेज है और बहुत प्रैक्टिकल है। तो मुझे लगता है कि इन शूज में उनके पांव बहुत ही परफेक्टली फिट होने वाले।
2: आज आज शहर नुवे रंग दईए लाल वे, दुनिया पे याद करू होया जो कमाल वे। आज आज शहर नुवे रंग।
1: सो एक नए चैप्टर का मतलब पुरानी यादों को भूलना नहीं होता है, बस उन्हें एक नई शुरुआत देना होता है। एंड इसी फ्रेश वाइब के साथ लेट्स कंटिन्यू विद दिस ट्रैक।
3: ओए ओए ओए

0: राज की बात बताऊं, मेरी आवाज कभी अच्छी थी ही नहीं।
1: अगर हम सब की जानी पहचानी गोल्डन वॉइस के मालिक दी अमीन सयानी जी का ये कहना है, तो सोचिए आप भी अपनी आवाज को सबके दिलों तक कैसे ले जा सकते हैं। द RJ Academy एट मस्ती मीडिया नेटवर्क इज नाउ ओपन फॉर यू। That too with a hybrid model for your convenience. 12 hours of training per level. Flexible individual focused syllabus offered for 14 years and above. Selected trained voices to get an opportunity to host live on Radio Masti 24/7. Email a brief intro to info@radiomasti.com.sg requesting for application form.
2: Namaste behno aur bhaiyo, main aapka dost Amin Sayani bol raha hoon.

0: हैंगआउट करेंगे पर थोड़ा हटके। ये है मस्ती हैंगआउट आरजे मुग्धा के साथ।
1: एक और फ्राइडे एंड मैं एक और मिथ तोड़ने वाली हूँ। M for myth, M for मैं, मिथ तोड़ेंगे। वीकेंड का मतलब ना सिर्फ कोई वायरल कैफे में जाना, ट्रेंडिंग रील्स बनाना, इंस्टाग्राम वर्दी प्लान्स नहीं होते हैं। नो, ये जो गाना हमने आज पिक किया है, जो मैंने आपके लिए प्ले किया था वेक अप सेट, ये आपको यही बताता है, अपनी लाइफ, अपनी पेस और अपना वीकेंड, डू नॉट कॉपी एनी बडी सोशल लाइफ, क्योंकि आजकल हम सबकी लाइफ में ट्रेंड ही ट्रेंड करता है। वो कौन से कैफे में गया, उसने कौन सा पोज मारा, क्या ट्रेंडिंग है, ओ प्लीज नहीं। दैट्स व्हाई तो मैं आपको वेक अप सेट की दुनिया में लेकर आई हूँ। वैसे बॉलीवुड से भी एक बहुत अच्छी खबर आई है। खुशाली कुमार, हम सब जानते हैं, उन्होंने कहा है कि वो सिर्फ अपनी फैमिली लेगेसी पर डिपेंड नहीं रहना चाहती हैं, इसीलिए वो कुछ अलग कंटेंट ड्रिवन रोल्स भी चूज कर रही हैं ताकि वो अपनी खुद की पहचान बना सकें। मतलब वो अपने हाथ पैर मार रही हैं ताकि वो अलग अलग जगहों पे नई नई चीजें ट्राई कर सकें और कॉपी पेस्ट के चक्कर में ना रह जाएं और उसी एक भेड़ चाल जिसको कहते हैं उसमें ना चले। देखो बात तो सही है ना, सबके रास्ते अलग अलग होते हैं, तो इस वीकेंड दूसरों के प्लान्स मत कॉपी करो या उनकी भेड़ चाल में मत चलो। जो आपको जेन्युइनली खुश करे वो करो। आधा

0: सिंगापुर बोर हो गए हो क्या? अब टेंशन और बोर्डम होने वाला है फुल ऑन डिसअपीयर,
1: क्योंकि आ रहा है मस्ती हैंगआउट विद आरजे मुग्धा। गॉसिप का ओवरलोड, एंटरटेनमेंट का धमाका और दुनिया भर की खबरों का तड़का।
0: सीधी न्यूज तो सब देते हैं, ये शो देता है टेढ़ी न्यूज विद सार्कैज़म की टॉपिंग और मस्ती की क्रीम। गारंटीड मूड होगा हाई, इमेजिनेशन होगी फ्लाई और आप हंसोगे बिन वाईफाई।
1: तो सिंगापुर, गेट रेडी फॉर योर डेली लाफ्टर डोज। मस्ती हैंगआउट विद आरजे मुग्धा, ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।
0: फॉर शो टाइमिंग्स चेक आउट द रेडियो मस्ती 24/7 लाइव ऐप। आरजे मुग्धा के साथ गॉसिप भी, मस्ती भी, सार्कैज़म भी, सब कुछ सिर्फ मस्ती हैंगआउट।

0: हैंगआउट करेंगे पर थोड़ा हटके। ये है मस्ती हैंगआउट आरजे मुग्धा के साथ।
1: हाय एवरीबॉडी, शो के दूसरे आर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दिस इज मी मुग्धा। इट्स फ्राइडे वाइब। यो, आई एम श्योर आप एंजॉय कर रहे होंगे बिकॉज मैं कोई ज्ञानवान नहीं बांट रही आज। इट्स जस्ट अबाउट द मूवीज एंड द सॉन्ग्स एंड सम फन एंड सम न्यूज। और बस आज के फ्राइडे जो इवनिंग एंड नाइट है उसको ऑसम बनाने की मेरी पूरी तैयारी है। सो वी हैव एंटर्ड इन द सेकेंड आर एंड द मूवी आई एम गोना टॉक अबाउट इज वेक अप सिड। क्योंकि फर्स्ट आवर में गाना मैंने उसी का लिया था। वेक अप सिड फॉर मी इज लाइक बहुत ही रिलेटेबल फिल्म है। व्हाई? कभी कभी ना लाइफ का सबसे कंफ्यूजिंग क्वेश्चन पता है क्या होता है? ये वाला चूज करें या वो वाला चूज करें? ये वो ये यही करते रहते हैं। एंड फनी बात पता है, आंसर हमें हमेशा बाद में समझ में आता है। दिस इज लाइफ एंड दिस इज व्हाई वेक अप सिड इतनी रिलेटेबल पिक्चर है हमेशा और आज भी और आगे भी रहेगी। पता है, क्योंकि सिड की तरह ना हम सब भी कभी ना कभी लाइफ में कंफ्यूज होते ही हैं। मैं तो हमेशा ही कहती हूँ। वैसे एक बहुत इंटरेस्टिंग बॉलीवुड स्टोरी है जो मेरे सामने आई। सो अकॉर्डिंग टू सम न्यूज एंड रिपोर्ट्स पता लगा कि सैफ अली खान ने एक वक्त पर रॉकस्टार का ऑफर रिजेक्ट कर दिया था फॉर द मूवी विच वन कैन यू गेस? लव आजकल। उन्होंने रॉकस्टार की जगह पे लव आजकल को सेलेक्ट किया था। पीछे मुड़कर देखना इज वेरी इजी, जज करना बहुत इजी, लेकिन उस वक्त वो डिसीजन उन्हें सही लगा तो उन्होंने किया। लाइफ ऐसी है, हर चॉइस परफेक्ट नहीं होती लेकिन हर चॉइस हमें कुछ ना कुछ सिखाती जरूर है। एंड व्हाट आई फील कि जब जो होता है वो बिल्कुल परफेक्ट होता है। मुझे लगता है रणबीर वॉज द बेस्ट चॉइस फॉर रॉकस्टार एंड लव आजकल को सैफ अली खान से बेहतर कोई नहीं प्ले कर सकता था। नोबडी। जिसके नाप का जूता है उसी का पांव जाएगा ना। बस वही बात है।

मेरी माँ। सो जो जहाँ फिट था वो उस खाने में बैठ गया। दिस इज लाइव। फिलहाल आप कहाँ फिट हो, मतलब कहाँ जा रहे हैं फ्राइडे? फिट इन द सेंस कहाँ जा रहे हैं, क्या प्लान है? सोचो सोचो, अभी रात बाकी है। स्टे ट्यून्ड, आप सुन रहे हैं मुग्धा को। आई विल बी राइट बैक।

0: 10 का 20 10 का 20 10 का 20 10 का 20।
1: अरे अरे अब बस 10 से दिल कहाँ भरेगा। मस्ती टॉप 20 लेकर रेणुका जो आने वाली है। टाइम टू रेज द बार। रम्मा मस्ती टॉप 20 बॉलीवुड चार्ट बस्टर्स ऑफ द वीक फुल ऑन रेणुका स्टाइल। Now, pumping up your Thursday evenings, 5 p.m. onwards, catch the OG rockstar Renuka with the week's top chart busters.

0: हैंगआउट करेंगे पर थोड़ा हटके। ये है मस्ती हैंगआउट आरजे मुग्धा के साथ।
1: Have you ever noticed? क्या ही होगा, I'm sure आप बहुत इंटेलिजेंट हैं। हम सब अपनी लाइफ में ना टाइमलाइन जो है हमारी लाइफ की दूसरों से कंपेयर करते रहते हैं। अरे यार उसको प्रमोशन मिल गया, और यार उसकी ना फिल्म आ गई, अरे पता है उनका ये ड्रीम पूरा हो गया, और यार वो तो उस वेकेशन पे चला गया, ये हो गया वो हो गया। वी कीप जस्ट कंपेयरिंग आवरसेल्व्स एक दूसरे से, किसी न किसी से। बट वेक अप सिड, पता है इसकी एक बात मुझे बहुत पसंद है, हर इंसान अपनी पेस से ग्रो करता है, एंड सेम गोज विद बॉलीवुड। क्योंकि मैं बहुत फिल्मी हूँ, इसके बिना तो मेरा खाना ना पचे। यू नो व्हाट, डायरेक्टर प्रियदर्शन ने बताया कि हैवान के विलन के लिए उनकी पहली चॉइस बॉबी देओल, अक्षय खन्ना एंड सुनील शेट्टी, ऐसे वो नाम सोच रहे थे। लेकिन आखिरकार उस रोल के लिए उनको कौन फिट लगा, अक्षय कुमार तक पहुंच गए। देखिए लाइफ में ना हर अपॉर्चुनिटी पहले नॉक जो है वो नहीं करके आती है, दरवाजा खटखटा के हर मौका नहीं आएगा आपके पास। कभी कभी दरवाजा खोल के रखते हो ना, मौका अपने आप चल के आ जाता है, या कई बार वो मौका लेट भी हो जाता है। आप इंतजार में बैठे रहते हो, दरवाजा बंद कर देते हो, फिर जब नेक्स्ट टाइम खोलते हो तब वो मौका आपके सामने आता है। लेकिन जब भी आता है तो लगता है यस दिस इज इट, दे हो। अक्षय खन्ना को देखो ना कितना स्ट्रगल है, और जब मौका आए तो अब देखो अक्षय अक्षय सीधे साधे अक्षय हर जगह। बेटे एक बात तो है, अक्षय का बोलबाला है, चाहे वो खन्ना हो चाहे कुमार। तो फिलहाल ये रोल मिला अक्षय कुमार को, इसीलिए अपनी लाइफ जर्नी को किसी की भी स्पीड से कंपेयर मत करो। जब जब जो जो होना है तब तब सो सो होता है। तेरे

धड़कन चारों ओर है, चलते जाओ, पहुंचता कौन है, चलते बहुत हैं। नई दुनिया के सुंदर बन के अंदर पुराने वक्त के पौधे बहुत हैं, और उन्हीं पुराने वक्त के पौधों की कहानी सुनाएगा समर, जो आज हमारी राहों में छायादार घने पेड़ बनकर खड़े हैं, जिनके होने से सफर की कड़ी धूप भी छांव सी लगती है। लेजेंड्स अचीवर सीरीज में सुनिए मेरे यानी समर के साथ कुछ महान शख्सियतों की जिंदगी की दास्तान, सिर्फ और सिर्फ रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर। जोश में रहो,

0: हैंगआउट करेंगे पर थोड़ा हटके। ये है मस्ती हैंगआउट आरजे मुग्धा के साथ।
1: पता है अडल्ट लाइफ की, अडल्टिंग की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? ओह माय गॉड, फाइनली कोई तो बता रहा है ये बात। हाय, दिस इज मी मुग्धा। हम इतने ग्रोन अप बन जाते हैं ना कि कभी कभी अपना फन वर्जन ही भूल जाते हैं। That's why I keep reminding you, बन जाओ वेक अप सिट के रणबीर कपूर। इसीलिए तो मुझे फिल्म इतनी पसंद है। ग्रोइंग अप का मतलब ना बोरिंग होना बिल्कुल नहीं है, एंड दैट्स व्हाट रणबीर सिंह ऑलवेज कीप्स अस टेलिंग, ट्राइंग टू टेल। वही तो बताना चाहता है बेचारा बच्चा कि बड़े हो जाओ पर बचपना मत खोना यार। एक बहुत एक्साइटिंग बात पता लगी हॉलीवुड से। स्पाइडरमैन की ब्रांड न्यू डे जो है ना, उसका फाइनल ट्रेलर जो है वो आया, एंड पीटर पार्कर और एमजे का एक इमोशनल रीयूनियन जो है उसकी झलक दिखाई दी, एंड फैंस का जो एक्साइटमेंट है वो और बढ़ गया, इमोशंस अटैच हो गए। देखिए सुपर हीरोज बदलते हैं, हम बदलते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ जाती हैं, लेकिन दिल के किसी कोने में वो स्पाइडरमैन का बचपना जिंदा रहता ही है। हमें स्पाइडरमैन को रोते देखना है पर हम उसे उछलते नहीं देखें ऐसा पॉसिबल नहीं है, हम चाहे कितना भी अडल्टिंग कर ले। एक्साइटमेंट को मिस नहीं कर सकते, वो फैन मोमेंट, वो बचपना हमेशा हमारे अंदर होना चाहिए। भले पीटर पार्कर अपने इमोशंस की जर्नी में बहरा होगा, पर छत से कूदो, क्रेन पे जाओ, किसी की तो जान बचाओ प्लीज, हम वो देखने आए हैं, हमें दिखाओ।

और यही तो बचपना है, स्पाइडरमैन जब तक जिश जिश जिश पिश पिश पिश नहीं करेगा कैसे मजा आएगा। हीरोइन को हवा में लेके उड़ो उल्टा लटक के थोड़ा, है ना। दिस इज द फन और इसको खोने नहीं देना है, समझे।

0: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर मैं हूँ अंतरा आपके साथ।
1: मैं आरजे पर मस्ती मॉर्निंग शो पर आपके साथ।
2: लीजिए समर आ गया है लेकर यादों का कारवां।
0: आपने इनकी आवाज तो सुनी है, अब क्या आप अपनी आवाज अपने ही शो के जरिए हमारे लाखों लिसनर्स तक पहुँचाना चाहेंगे? स्टेज फियर को भगाना हो या पैशन को आगे बढ़ाना हो, इट्स इम्पोर्टेंट टू स्टार्ट विद द राइट ट्रेनिंग। The RJ Academy at Masti Media Network is now open for you. That too with a hybrid model for your convenience. 12 hours training per level, flexible individual focus syllabus offered for 14 years old and above. Selected trained voices to get an opportunity to host live on Radio Masti 24/7. Email a brief intro to info@radiomasti.com.sg requesting for an application form.
3: Good morning.
4: हैंग आउट करेंगे पर थोड़ा हटके, ये है मस्ती हैंग आउट आरजे मुग्धा के साथ।
5: हाय, कितना भी ज्ञान से भागूं पर ये ज्ञान मेरा पीछा नहीं छोड़ता, पर ये ज्ञान किसी की लाइफ बना सकता है। हाउ? लाइफ का सबसे बड़ा डिसीजन पता है क्या होता है? घर छोड़ना नहीं, नहीं होता ये सबसे बड़ा डिसीजन, कंफर्ट जोन छोड़ना होता है। हाँ, नई जगह, नए लोग, नया काम, शुरू में ना सब बहुत ऑकवर्ड लगता है। ट्रस्ट मी, आई नो आप समझ रहे हैं, आप रिलेट कर सकते हो। वेकअप सिट भी तो आपको यही बताती है, जब तक आप फेमिलियर चीजों के साथ हो आपको कितना आसान लगता है, घर कितना कूल है, नाश्ता बन रहा है, आप खा रहे हो, मुंह मार रही है, जगा रही है, सब कुछ एकदम प्लान्ड है, कुछ नहीं करना आपको। एंड द मोमेंट आपने स्टेप आउट किया, बस। तो जब तक फेमिलियर चीजों से बाहर नहीं निकलोगे, जब तक अपना नया वर्जन नहीं ढूंढने निकलोगे, तब तक वो मिलेगा भी नहीं। और अगर आप भी सोच रहे हैं कि रेडियो में बोलना, आरजे बनना एक आपके लिए ऑप्शन हो सकता है, तो कंफर्ट जोन से बाहर निकलो, थोड़ी मेहनत करो, है ना। शुरुआत कहाँ से करनी है वही तो मैं रोज बताती हूँ आपको, उसके लिए कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा। घर से बाहर नहीं निकलना आपको, तो मैं तो ये भी नहीं कह रही हूँ। एक छोटा सा इंट्रोडक्शन, ब्रीफ इंट्रो आपको हमें लिख करके भेजना है info@radiomasti.com.sg पर, एंड द सिलेक्टेड वॉइसेस will get an opportunity to host live on Radio Masti 24/7 live. And with this, इतनी सारी चीजें हैं, like a 12-hour training session है, beginner से advanced level तक है, it's flexible, it's individual focus syllabus है, 14 साल या उससे ज्यादा की उम्र है आपकी, तो this is for you. This is the RJ Academy at Masti Media Network. And this is open for all now. Age मैंने आपको बता दी है।

0: हैंग आउट करेंगे पर थोड़ा हटके। ये है मस्ती हैंग आउट आरजे मुग्धा के साथ।
1: हैव यू एवर थॉट एवर, कुछ यादें ना सिर्फ आपके फोटो एल्बम्स में नहीं होती हैं, कभी कभी वो किसी गाने में होती हैं, कभी एक डायरी में होती हैं, कभी एक गेम के अंदर होती हैं। एंड दैट्स व्हाट आई एम गोना टॉक अबाउट। आई नो फ्राइडे इज ऑल अबाउट फन, बट दिस फन इज अ पार्ट ऑफ समबडीज लाइफ। मैंने थर्ड आवर के लिए जो सॉन्ग सेलेक्ट किया है दैट इज एक तारा, गूंजा सा है कोई तारा। आई एम प्रीटी श्योर हर किसी के दिल के बेहद करीब है ये ट्रैक। एक तारा सुनते ही ना लगता है जैसे वक्त धीमा हो गया है, फ्राइडे भी फ्राइडे ऐसे महसूस होता है, और हम उन जरा जरा सी खुशियों यादों के पास ना वापस ही पहुंच जाते हैं। बिल्कुल वैसे इंटरनेट पर एक बहुत ही खूबसूरत कहानी मेरे पास आई और मुझे लगा सब तक मुझे लेकर जानी चाहिए, और वो दिल जीत रही है। एक फादर ने अपने बेटे के गुजर जाने के बाद उसका पता है कोई एक ऐसी चीज है जो बहुत ही संभाल के रखी है, आप इमेजिन भी नहीं कर सकते, दैट इज हिज माइनक्राफ्ट सर्वर। आपको पता है उस पिता ने अपने बेटे का माइनक्राफ्ट सर्वर सालों तक चालू रखा, अभी भी रखा और आगे भी रखेंगे। ही कीप्स ऑन पेइंग द अमाउंट, और वो चाहते हैं कि वो जो एक स्पेस है ना उसका, वो हमेशा वैसे ही रहे। हर महीने वो सिर्फ इसलिए पेमेंट करते हैं क्योंकि उस डिजिटल दुनिया में उनके बेटे की क्रिएटिविटी, उसके सपने, उसकी यादें, उसका बनाया हुआ कुछ ना कुछ इज देयर। माय गॉड, उफ, दिस इज जस्ट ओके मुग्धा। मैं बहुत इमोशनल हूँ, किसी को पता नहीं, बट दिस इज माय डार्क साइड एक्चुअली। एंड पता है द बेस्ट पार्ट, ये सिर्फ उसके डैड नहीं कर रहे, उसके फ्रेंड्स भी उस सर्वर पे लगातार कुछ ना कुछ बनाते रहते हैं। उसका रूम अभी भी वैसा ही है उस सर्वर पे माइनक्राफ्ट के। जो भी बच्चे माइनक्राफ्ट खेलते हैं, खेल चुके हैं या माइनक्राफ्ट की दुनिया से हैं, दे ऑल विल रिलेट एंड दे कैन रिलेट टू मी। एंड आई एम प्रीटी श्योर बहुत सारे अभी बैठ के किसी न किसी याद में खोए होंगे। आई डोंट वांट टू प्रीच एनीबॉडी टुडे, लेकिन ये जो कहानी है ये एक्चुअली इट्स नॉट प्रीचिंग, ये आपकी जिंदगी को थोड़ा स्लो डाउन करने के लिए कि हेलो पीपल मैटर, पीपल ऑल्सो मैटर। फ्राइडे नाइट इट्स नॉट जस्ट अबाउट अ पब और अ पार्टी और जस्ट नाइट आउट, नहीं, इट्स अबाउट पीपल। घर जाके भी आप टाइम स्पेंड कर सकते हैं, अपनी फ्राइडे नाइट एंजॉय कर सकते हैं विद द पीपल हु एक्चुअली मैटर फॉर यू। जैसे उस शख्स के लिए उसका बेटा, उसके दोस्त जिन्होंने उसको अभी भी माइनक्राफ्ट की दुनिया में जिंदा रखा है एंड वो आगे भी रखेंगे। इस बात को बहुत साल हो चुके हैं, दे आर ऑल ग्रोन अप लाइक 20, 25, 26 years, एंड वो बच्चा शायद 13-14 साल की उम्र में गुजर गया था और तब से लेके आज तक माइनक्राफ्ट की दुनिया में वो जिंदा है। मेरे बहुत सारे कजन्स, नीज, नेफ्यूज, उनको माइनक्राफ्ट बहुत पसंद है। नाउ आई नो व्हाई। वेल एनीवे Friday night is about enjoying. Let's enjoy.

0: Some stories are easy to tell, पर कुछ कहानियाँ दिल के अंदर ही रह जाती हैं। एक छोटी सी बात पर पेरेंट्स से दूरी, एक प्यार जो कभी कह नहीं पाए, या वो करियर डिसीजन जो आज भी रातों की नींद चुरा लेता है। On Masti Media Network, we're opening a safe space. Dear Masti, दिल से, जहाँ आप लिख सकते हैं वो सब जो आप कह नहीं पाते। हर हफ्ते हम पढ़ेंगे आपके अनोनिमस लेटर्स, और कभी कभी एक गाना कह देता है वो बात जो लफ्जों में नहीं होती। बिकॉज समटाइम्स रेडियो पर बैठा एक अनजाना इंसान आपको दुनिया से ज्यादा समझ लेता है। सो राइट टू अस, डियर मस्ती, दिल से।
1: हैंगआउट करेंगे पर थोड़ा हटके, ये है मस्ती हैंगआउट आरजे मुग्धा के साथ।
2: इट्स नॉट अबाउट इमोशन ऑलवेज, यार ठीक है मैं थोड़ी सी इमोशनल दिल वाली हूँ, दैट्स डार्क साइड, लेकिन मेरा एक बहुत ही फनी साइड भी है। कभी आपने नोटिस किया बचपन में बर्थडे का मतलब क्या होता है? सिर्फ एक ही होता था, केक्स एंड कैंडल्स और हैप्पीनेस। बर्थडे पर केक ना आए कैसे पॉसिबल है? केक पर कैंडल ना हो तो ये तो बिल्कुल इम्पॉसिबल है। इट्स लाइक हु बॉट द केक विदाउट अ कैंडल एंड हु ब्रॉट द केक विदाउट अ कैंडल, डेड डाई किल वैसी सिचुएशन। पता है फिर हम बड़े हो जाते हैं और बड़े होते होते हम सेलिब्रेशन का जो रीजन है उसको और बड़ा कर लेते हैं। प्रमोशन सेलिब्रेट होती है, नई कार सेलिब्रेशन के लिए आती है, बट एट केक तो बचपन के साथ है ना। एक तारा की वाइब मुझे एक बात याद दिलाती है, जिंदगी की सबसे खूबसूरत खुशियां अक्सर छोटी होती हैं और बचपन वाली होती हैं। सो लेट्स गो बैक, रीवाइंड। एक बहुत ही प्यारी सी बर्थडे वीडियो इंटरनेट पर जो है वायरल हो रही है, सबका दिल जीत रही है। छोटी सी बच्ची है, कैंडल्स नहीं बुझा पा रही है, वो एक ही कैंडल एक्चुअली उसके बर्थडे केक पे। शी इज ट्राइंग वेरी हार्ड, वो फूंक मारने की कोशिश कर रही है पर फूंक सही दिशा में नहीं जा रही है, हवा से उसकी फूंक कहीं और जा रही है और वो कैंडल नहीं बुझ रही है। और फिर पता क्या करती है, बिना सोचे उसने अपने बड़े भाई की तरफ देखा और भाई ने तुरंत उसकी मदद की और बस दैट वाज द मोमेंट। पूरी दुनिया मुस्कुरा उठी जैसे कैंडल बुझी, सब ने ताली बजाई, एवरीबॉडी हु वॉच द वीडियोस ने बर्थडे सेलिब्रेट किया। व्हाई? बिकॉज छोटी छोटी खुशियां मैटर करती हैं। शायद खुशी परफेक्ट मोमेंट नहीं होती है, खुशी उन लोगों के साथ होती है जो हर छोटी जीत को सेलिब्रेशंस बना देते हैं, सेलिब्रेशन में तब्दील कर देते हैं। एंड ऑन दिस नोट, वीकेंड को थोड़ा और सेलिब्रेट कीजिए बिना किसी स्पेशल रीजन के विद योर लव्ड वंस, राइट? आगे बढ़ते हैं, फ्राइडे नाइट का ये अगला ट्रैक आपके लिए।

0: कहीं कोई चाहता है 105 बच्चे।
1: बेबी बूम नहीं, बेबी सुनामी। क्रेजी दुनिया, क्रेजी खबरें और हमारा ये क्रेजी शो। दिस इज मस्ती मैडनेस ऑन रेडियो मस्ती 24/7।
2: डाउनलोड रेडियो मस्ती 24/7 ऐप टू कॉल अस इंस्टेंटली और ईमेल, व्हाट्सएप, टेक्स्ट अस फ्रॉम द ऐप। Hit us on the gram. It's Radio Musty 24/7. And don't forget to like our ever-buzzing Facebook page, Radio Musty 24/7 Singapore. Check it out.

0: हैंग आउट करेंगे पर थोड़ा हटके। ये है मस्ती हैंग आउट आरजे मुग्धा के साथ।
1: यू नो व्हाट, कभी कभी किसी चीज की वैल्यू तब समझ में आती है जब वो हमारे पास नहीं होती है। कोई पुराना घर, कोई पुरानी डायरी, कोई छोटा डिसीजन या कोई छोटा हुआ डिसीजन, उस मोमेंट पर जो बहुत ऑर्डिनरी लगता है और वक्त गुजरने के साथ हमें लगता है कि वो चीज़ यार बहुत बड़ी थी, वो बहुत बड़ी कहानी बन जाती है। एंड शायद एक तारा जो है कुछ ऐसा ही एक इमोशन हमारे अंदर लेकर आता है। दैट टेक्स मी बैक टू बॉलीवुड अगेन। ये बहुत ही खूबसूरत गाना है और धीरे धीरे किसी मेमोरी का हिस्सा बन जाना ही गाना हमको सिखाता है। व्हाट हैपेंड वाज, बॉलीवुड से एक इंटरेस्टिंग कहानी जो मुझे इस गाने से कनेक्ट करती मिली वो ये कि जितेंद्र जी ने भारत भूषण जी, बहुत ही जाने माने एक्टर बॉलीवुड के, उनसे उनका बंगला खरीदा था, पाली हिल बंगलो। और जब वो खरीदा था उस वक्त वो सिर्फ 4.2 लाख रुपीज में था। एक्चुअली हुआ क्या था, भूषण साहब जो है ना, उनकी क्लासिक फिल्म आई थी बैजू बाबरा और उस वक्त वो बहुत फिनेंशियल क्राइसिस से जूझ रहे थे एंड उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी सेल कर दी जितेंद्र जी को। अब आप समझ सकते हैं कितनी पुरानी बात है, 4.25 लाख उस वक्त बहुत बड़ी बात थी। आपको पता है उस प्रॉपर्टी की प्रेजेंट कीमत कितनी है? दैट इज 450 करोड़ नियरली। द प्रॉपर्टी, द बंगलो वन स्टूड जो था वहां पर, उस लैंड की प्रॉपर्टी अराउंड 450 करोड़। आयरॉनिकली जितेंद्र जो है बहुत कम वक्त के बाद उस घर से निकल गए थे क्योंकि वो लगातार फेलियर्स का सामना कर रहे थे। पीपल सेड इट वाज अनलकी, इट वाज अनलकी जस्ट बिकॉज कि उनको लगा कि भारत भूषण ने इस बंगलो को बेचा क्योंकि वो उनको नुकसान हुआ, मैं फ्लॉप्स दे रहा हूँ, ये बंगलो ही खराब है, एंड दे लेफ्ट। नाउ जस्ट सी। सो यही मैं कहना चाहती थी कि कई बार असली वैल्यू तब पता लगती है जब वो चीज आपके हाथ से निकल जाती है। तो कभी कभी छोटी छोटी चीजों को बहुत जल्दी जज मत करिए, वक्त उनके भीतर छुपी जो बड़ी बड़ी वैल्यूज है ना खुद ही दिखा देता है। फिलहाल एक बहुत ही वैल्यूएबल गाना आपके लिए।

0: जापान में रोती हुई औरतों को मिलते हैं हैंडसम हग करने वाले बॉयज।
1: वाओ, हमारे यहाँ तो बस बेटा रो मत ये मिलता है। यहाँ मिलते हैं दो करारे थप्पड़। This is Masti Madness on Radio Masti 24/7.
2: Download Radio Masti 24/7 app to call us instantly or email, WhatsApp, text us from the app.

0: हैंगआउट करेंगे पर थोड़ा हटके। ये है मस्ती हैंगआउट आरजे मुग्धा के साथ।
1: एंड विद दिस, इसी के साथ आज का मस्ती हैंगआउट का सफर यहीं पर खत्म होता है। उम्मीद है कि आज की बातें, बॉलीवुड की खबरें और वो छोटे-छोटे एहसास, इमोशंस और फ्राइडे वाइब जो है आपके वीकेंड को थोड़ा और ज्यादा खूबसूरत बना गई होगी, है ना। अगर इस वीकेंड पर आपकी कोई भी, मेरी कोई भी बात जो है आपके फेस पर जरा सी भी स्माइल लेकर आई हो, आपको स्माइल करने का मौका मिला हो, तो बस मेरा काम हो गया। और अगर इस वीकेंड किसी अपने से मिलने का मौका मिले तो जरूर मिलेगा। और अगर सिर्फ अपने आप के साथ वक्त बिताने का मन हो तो दैट्स द बेस्ट थिंग, क्योंकि हम नहीं करते ये काम, अक्सर हम लोगों से घिरे रहते हैं। दिस इज मी आरजे मुग्धा, आपसे इजाजत लेती हूँ। अपना ख्याल रखिए, मुस्कुराते रहिए, याद रखिए वीकेंड सिर्फ 2 दिन का नहीं होता है, 2 दिन का होता है, मैं तो ये भी बोल रही थी, ये होता 2 दिन का है, लेकिन उसकी जो यादें हैं ना वो पूरे हफ्ते चलती हैं। तो इस 2 दिन को इतना एंजॉय करिए, इतना एंजॉय करिए कि अगला पूरा हफ्ता आप इन 2 दिन की यादों के साथ मना लीजिए और बस एवं आ जाएगा फ्राइडे, ऐसी छुटकी बजाते। पर फिलहाल के लिए तो एंजॉय योर फ्राइडे। मैं मिलूंगी आपसे अगले शो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ वेरी नाइस वीकेंड।

0: इस वीकेंड वाज अ गाय.
1: वो आ गया, देखो वो आ गया.
0: इस वीकेंड वाज अ गर्ल. इस वीकेंड वाज अ फिल्मी डायलॉग.
2: स्वागत नहीं करोगे आप हमारा.
0: एंड इफ वीकेंड वाज एन ऐप.
3: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव.
4: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव.
5: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव.
6: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव.
0: How to make best of weekends that travel faster than light. Tune into our Musty Weekends on Radio Musty 24/7 Live, the perfect recipe for you to unwind, keeping body entertainment close to you, anywhere, anytime.
7: नहीं रहना मुझे घर पे, नहीं रहना आज तेरे नाल मेरी सारी शाम गुजरनी, नहीं आज मुझे दुनिया की सुननी, मुझे तो है बस अपनी ही करनी.

0: नचे गया एग्जिट पर और गाने आ गए नॉनस्टॉप म्यूजिक नॉनस्टॉप मस्ती ओनली ऑन मस्ती म्यूजिक कैफे
1: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर
2: चेक इट आउट
3: It's the best of Bollywood playing on Radio Masti 24/7 Live. Have a masti bhara weekend.

ये रात तो अपनी है, पर एक ख्याल किसका है? तुमको लेकर ये रात हमें इतना प्यार क्यों करती है? मुझे चांद पे ले चलो, सबको सुलाकर हमसे अकेले में बात करती है। बनके रात के हम सफर हर रोज 11 बजे ट्यून इन टू रात अकेले है। The perfect recipe for you to unwind. Musty weekends only on Radio Musty 24/7 Live.

0: बनाना चाहिए? आप बोलो, हम बनाएंगे। चाहे ब्रेकअप हो या क्रश का सीन,
1: ऑल इज वेल।
0: आपकी प्लेलिस्ट, आपकी मस्ती। व्हाट्सएप करिए हमारे ऐप के थ्रू या फिर डायरेक्ट सिंगापुर नंबर 9151893 पर। मस्ती बॉयज, आपकी चॉइस।
2: Only on Radio Musti 24/7 Live, a part of Musti Media Network Singapore.
3: Check it out.
4: Weekend ka maza with the best of Bollywood playing only on Radio Musti 24/7 Live.

0: इस वीकेंड वाज अ गाय,
1: वो आ गया, देखो वो आ गया।
0: इस वीकेंड वाज अ गर्ल, इस वीकेंड वाज अ फिल्मी डायलॉग,
2: स्वागत नहीं करोगे आप हमारा।
0: एंड इफ वीकेंड वाज एन ऐप,
3: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव,
4: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव,
5: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव,
6: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।
0: How to make best of weekends that travel faster than light. Tune into our Musty Weekends on Radio Musty 24/7 Live, the perfect recipe for you to unwind, keeping body entertainment close to you, anywhere, anytime.

0: ऐसा पुरुष ही नहीं, महापुरुष है, महापुरुष।
1: वेंसडे को मूड डाउन हो गया, कोई बात नहीं, हमारे पास उसका भी जुगाड़ है। मिडवीक ब्लू, जहां काम की चिंता छोड़ो और हमारे साथ मस्त हो जाओ। फिल्मी बातें, मस्ती मोमेंट्स, थोड़ा छेड़ना और पंगे लेना भी, क्योंकि लाइफ सिर्फ काम के लिए नहीं है मेरे दोस्त। ट्यून इन एंड पावर थ्रू द वीक विद मिडवीक ब्लूज ऑन रेडियो मस्ती 24/7। आओ मूड चेंज करें।
2: It's the best of Bollywood playing on Radio Masti 24/7 live. Have a masti bhara weekend.

0: सिंगापुर बोर हो गए हो क्या? अब टेंशन और बोर्डम होने वाला है फुल ऑन डिसअपीयर,
1: क्योंकि आ रहा है मस्ती हैंगआउट विद आरजे मुग्धा। गॉसिप का ओवरलोड, एंटरटेनमेंट का धमाका और दुनिया भर की खबरों का तड़का।
0: सीधी न्यूज तो सब देते हैं, ये शो देता है टेढ़ी न्यूज विद सार्कैज़म की टॉपिंग और मस्ती की क्रीम। गारंटीड मूड होगा हाई, इमेजिनेशन होगी फ्लाई और आप हंसोगे बिन वाईफाई।
1: तो सिंगापुर, गेट रेडी फॉर योर डेली लाफ्टर डोज। मस्ती हैंग आउट विद आरजे मुग्धा, ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।
0: फॉर शो टाइमिंग्स चेक आउट द रेडियो मस्ती 24/7 लाइव ऐप। आरजे मुग्धा के साथ गॉसिप भी, मस्ती भी, सार्कैज़म भी, सब कुछ सिर्फ मस्ती हैंग आउट।
2: Perfect recipe for you to unwind. Musty Weekends only on Radio Musty 24/7 Live.

0: इस वीकेंड वाज अ गाय,
1: वो आ गया, देखो वो आ गया।
0: इस वीकेंड वाज अ गर्ल, इस वीकेंड वाज अ फिल्मी डायलॉग,
2: स्वागत नहीं करोगे आप हमारा।
0: एंड इफ वीकेंड वाज एन ऐप,
3: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव,
4: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव,
5: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव,
6: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।
0: How to make best of weekends that travel faster than light. Tune into our Musty Weekends on Radio Musty 24/7 Live, the perfect recipe for you to unwind, keeping body entertainment close to you, anywhere, anytime.

0: perfect recipe for you to unwind. Musti Weekends only on Radio Musti 24/7 Live.
1: मोहब्बत क्या है?
2: मोहब्बत, मोहब्बत जिंदगी है.
3: मोहब्बत क्या है, क्यों है, कहाँ है?
2: मेरा विश्वास है कि भगवान ने सारे दिल के रिश्ते पहले से ही जोड़ दिए हैं, बस उनका मिलना हम पे छोड़ दिया है. उसने हम सबको जोड़ियों में बनाया है और हर एक के लिए कोई एक जीवन साथी है.
3: जीवन साथी, क्या बकवास है, मैं इन सब बातों को नहीं मानता.
2: मुझे तो पूरा भरोसा है कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई मेरे लिए बनाया गया है और कभी ना कभी मैं उससे जरूर मिलूंगी.
3: अच्छा अच्छा अच्छा, लेकिन मुझे कोई बताएगा प्लीज कि मुझे कैसे मालूम पड़ेगा कि मेरे लिए कौन बनाया गया? मेरा मतलब, क्या वो मेरे नाम का बोर्ड लेकर घूम रही होगी?

0: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर मैं हूँ अंतरा आपके साथ,
1: मैं आरजे पर मस्ती मॉर्निंग शो पर आपके साथ।
2: लीजिए समर आ गया है लेकर यादों का कारवां।
3: आपने इनकी आवाज तो सुनी है, अब क्या आप अपनी आवाज अपने ही शो के जरिए हमारे लाखों लिसनर्स तक पहुंचाना चाहेंगे? स्टेज फियर को भगाना हो या पैशन को आगे बढ़ाना हो, इट्स इम्पोर्टेंट टू स्टार्ट विद द राइट ट्रेनिंग। द आरजे अकेडमी एट मस्ती मीडिया नेटवर्क इज नाउ ओपन फॉर यू, that too with a hybrid model for your convenience. 12 hours training per level, flexible individual focus syllabus offered for 14 years old and above. Selected trained voices to get an opportunity to host live on Radio Masti 24/7. Email a brief intro to info@radiomasti.com.sg requesting for an application form.
4: Good morning.
5: Best of Bollywood playing on Radio Masti 24/7 live. Have a masti bhara weekend.

Jay Kumar. Let's take a selfie now.

0: बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं।
1: लाइफ थोड़ी बोरिंग लग रही है, टेंशन नहीं लेने का। टाइम फॉर योर थेरेपी सेशन, मस्ती का मंत्रा विद आरजे अंतरा, जहां न्यूज है फिल्मी, गॉसिप है स्पाइसी और म्यूजिक है फुल ऑन मस्त। बिकॉज हैप्पीनेस का असली मंत्रा लाती है आरजे अंतरा, हर ट्यूसडे सुबह 7 बजे ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7।
2: द परफेक्ट रेसिपी फॉर यू टू अनवाइंड, मस्ती वीकेंड्स ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।

0: Some stories are easy to tell, पर कुछ कहानियाँ दिल के अंदर ही रह जाती हैं। एक छोटी सी बात पर पेरेंट्स से दूरी, एक प्यार जो कभी कह नहीं पाए, या वो करियर डिसीजन जो आज भी रातों की नींद चुरा लेता है। On मस्ती मीडिया नेटवर्क, we're opening a safe space, dear मस्ती, दिल से, जहाँ आप लिख सकते हैं वो सब जो आप कह नहीं पाते। हर हफ्ते हम पढ़ेंगे आपके अनोनिमस लेटर्स, और कभी कभी एक गाना कह देता है वो बात जो लफ्जों में नहीं होती। बिकॉज समटाइम्स रेडियो पर बैठा एक अनजाना इंसान आपको दुनिया से ज्यादा समझ लेता है। सो राइट टू अस, डियर मस्ती, दिल से।
1: वीकेंड का मजा विद द बेस्ट ऑफ बॉलीवुड प्लेइंग ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।

0: बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं।
1: छोटी छोटी बातें छोड़ो और बड़े बड़े हिट सुनो। आपके रिक्वेस्ट सी बनाएंगे शो का ब्लॉकबस्टर प्लेलिस्ट। रोमांटिक, फिल्मी, पार्टी वाइब्स, सब मिलेगा यही के यही। व्हाट्सएप करिए हमारे ऐप के थ्रू या फिर डायरेक्ट सिंगापुर नंबर 9151896 पर। मस्ती वॉइस आपकी चॉइस।
2: ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव, अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर।
3: चेक इट आउट।
4: रात अकेली है
5: तो क्या, हम तो आपके

0: रात अकेली है तो क्या, हम तो आपके साथ हैं। जोश में रहो।
1: और कहीं कोई चाहता है 105 बच्चे?
2: बेबी बूम नहीं, बेबी सुनामी। क्रेजी दुनिया, क्रेजी खबरें और हमारा ये क्रेजी शो। दिस इज मस्ती मैडनेस ऑन रेडियो मस्ती 24/7।
3: डाउनलोड रेडियो मस्ती 24/7 ऐप टू कॉल अस इंस्टेंटली और ईमेल, व्हाट्सएप, टेक्स्ट अस फ्रॉम द ऐप। जोश में रहो।
0: रात अकेली है तो क्या, हम तो आपके

यहाँ से कहाँ जाऊँ, कहाँ मैं छुप जाऊँ, ये आधा सा दिल मैं कैसे लगाऊँ, हूँ खुद से जुदा।

0: नशा है और गानों से मदहोश करने के लिए हम है ना
1: रात अकेली है जोश में रहो।
2: मुझे

हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलजार हमारा। ईस्ट और वेस्ट, इंडिया इज द बेस्ट। ईस्ट और वेस्ट।

कड़ा बाबा, यहाँ किलौनी वावा, यहाँ कडांडिया बाबा, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी ये गुलस्तान हमारा। ईस्ट और वेस्ट इंडिया इज द बेस्ट, ईस्ट और वेस्ट इंडिया।

जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी ये गुलशन हमारा, ईस्ट और वेस्ट इंडिया इज द बेस्ट।

0: 80 90 पूरे 100 रात के बज गए 1:45 जो होता है होने दो
1: रात अकेली है
2: रात अकेली है तो क्या हम तो आप

0: किया था शुक्रिया।
1: Drop the needle.

0: रात अकेली है तो क्या, हम तो आपके साथ हैं। जोश में रहो।
1: आज इस मुबारक मौके पर मैं आप लोगों को मेरी और कामिनी की दास्तान सुनाना चाहता हूँ, मोहब्बत की दास्तान।

0: नशा है और गानों से मदहोश करने के लिए हम है ना,
1: रात अकेली है जोश में रहो।
2: क्या हुआ?
3: वो तो
2: क्यूट है ना।
3: अरे पहलवान है,
2: पर तुमसे प्यार करती है।
3: हो नहीं सकता।
2: और तुम्हें भी उससे प्यार करना चाहिए।
3: हो नहीं सकता।
2: वो तुम्हें पकड़ने यही आ रही है।
3: ये हो नहीं सकता।
4: होने को तो कुछ भी हो सकता है मेरे श्याम।

0: इस वीकेंड वाज अ गाय.
1: वो आ गया, देखो वो आ गया.
0: इस वीकेंड वाज अ गर्ल. इस वीकेंड वाज अ फिल्मी डायलॉग.
2: स्वागत नहीं करोगे आप हमारा.
0: एंड इफ वीकेंड वाज एन ऐप.
3: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव.
4: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव.
5: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव.
6: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव.
0: How to make best of weekends that travel faster than light. Tune into our Musty Weekends on Radio Musty 24/7 Live, the perfect recipe for you to unwind, keeping body entertainment close to you, anywhere, anytime.

0: जापान में रोती हुई औरतों को मिलते हैं हैंडसम हग करने वाले बॉयज।
1: वाओ, हमारे यहाँ तो बस बेटा रो मत ये मिलता है। यहाँ मिलते हैं दो करारे थप्पड़। This is Masti Madness on Radio Masti 24/7.
2: Download Radio Masti 24/7 app to call us instantly or email, WhatsApp, text us from the app. Josh Mehra.
3: It's the best of Bollywood playing on Radio Masti 24/7 live. Have a Masti Bhara weekend.

0: बिना फ्लाइट टिकट खरीदे दुनिया का चक्कर लगवाएगा कौन? पेपराजी से भी तेज गॉसिप्स आपको लाकर देगा कौन? क्या बात है, आप तो काफी स्मार्ट निकले। तो सुनिए, सालों से एक टक सिंगापुर तक आपको अपडेट रखने वाली आपकी आरजे नुपुर को मस्ती मॉर्निंग्स पर ट्यूसडे वेंसडे एंड थर्सडे को ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव। ये है मस्ती मॉर्निंग्स मेरी जान।
1: फॉर शो टाइमिंग्स चेक आउट द रेडियो मस्ती ऐप नाउ।
2: Perfect recipe for you to unwind. Musty Weekends only on Radio Musty 24/7 Live.

0: और खबर मिली है कि दुनिया में लोग फार्ट बॉटल में खरीद रहे हैं।
1: क्या लोगों के पास पैसे ज्यादा है या दिमाग कम? मस्ती मैडनेस, जहां न्यूज भी होती है गैस्ट्रोनॉमिकल।
2: Download Radio Musti 24/7 app to call us instantly or email, WhatsApp, text us from the app.
3: It's the best of Bollywood playing on Radio Musti 24/7 live. Have a musti bhara weekend.

0: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर मैं हूँ अंतरा आपके साथ,
1: मैं आरजे पर मस्ती मॉर्निंग शो पर आपके साथ।
2: लीजिए समर आ गया है लेकर यादों का कारवां।
3: आपने इनकी आवाज तो सुनी है, अब क्या आप अपनी आवाज अपने ही शो के जरिए हमारे लाखों लिसनर्स तक पहुंचाना चाहेंगे? स्टेज फियर को भगाना हो या पैशन को आगे बढ़ाना हो, इट्स इम्पोर्टेंट टू स्टार्ट विद द राइट ट्रेनिंग। The RJ Academy at Masti Media Network is now open for you. That too with a hybrid model for your convenience. 12 hours training per level, flexible individual focused syllabus offered for 14 years old and above. Selected trained voices to get an opportunity to host live on Radio Masti 24/7. Email a brief intro to info@radiomasti.com.sg requesting for an application form.
4: Good morning.
5: Weekend ka maza with the best of Bollywood playing only on Radio Masti 24/7 live.

0: जब एक धुन से सांस का पता चल जाता था, जब एक मिस्ड कॉल से आवाज का पता चल जाता था, घिसी हुई वीडियो टेप्स पर बनी हमारी क्रिस्टल क्लियर यादें।
1: आई लव यू रचना।
0: समोसा पैटीज, फूटी लिमका, फ्लेम्स से लेकर स्लैम बुक्स तक, झूठी बॉटल से कोल्ड ड्रिंक पीने को इनडायरेक्ट किस समझने वाले दिन। Your dose of 90s nostalgia, musty 90s mixtape with aapki 90s wali antra. Thursdays 11 a.m. onwards only on Radio Musty 24/7 Live. 75.